0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं डॉक्टर प्रीति सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो बिना किसी दवा के और बिना ही किसी इलाज के एक दर्शन के द्वारा हमारे मन को गहराई से बदल सकती है, जिसको कहा जाता है ध्यान, जिसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में, सोशल मीडिया के दबाव में, पढ़ाई और नौकरी की चिंताएं, इन सब के बीच में मन को शांति कहाँ से मिले? क्या कुछ ही मिनट रोज ध्यान करके हम सच में ज्यादा शांत, सकारात्मक और संतुलित हो सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन से जुड़े हुए एक साधक जो भक्ति योग और मंत्र ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ एक साधक ही नहीं है, ये एक पेशे से एक इंजीनियर है और इस्कॉन भक्ति शास्त्री के नाम से इनको जाना जाता है, और जो कि TTC सर्टिफाइड भगवत गीता ट्रेनर भी हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने 13 साल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अलग अलग विभागों में, R&D डिपार्टमेंट्स में इन्होंने IT कंपनीज में काम किया है, और पिछले 10 साल से इन्होंने वैल्यू बेस्ड सेशन और वर्कशॉप्स ली हैं। देश और विदेशों में इन्होंने यात्राएं की हैं और न्यूयॉर्क, USA, लंदन, कैलिफोर्निया, चाइना, ये कुछ ऐसे नाम मैं बता रही हूँ, ऐसे स्थान में बता रही हूँ जहाँ पे जाके इन्होंने भगवत गीता के प्रसार और प्रचार में अपना योगदान दिया है। बल्कि इसके अलावा ये बहुत सारे अकेडमिक कोर्सेज भी जो हैं ये डिलीवर करते हैं, जिसमें भगवत गीता, इमोशनल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप लगाई हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो आयोजित किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बीच में, जीव गोपाल दास जी, और जो हमें बताएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जपमाला और सरल साधना के जरिए कोई भी साधारण व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता, एकाग्रता और आनंद कैसे ला सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफर ध्यान और भक्ति के रंगों के साथ में। जीव गोपाल दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा में।
1: धन्यवाद मैम, आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा मंच है जो कि आप इतने सालों से बहुत सुंदर रूप से लेके चल रहे हैं। रियली थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इनविटेशन जो है एक्सेप्ट करने के लिए, और मैं खुद बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि आप पेशे से एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग से आप कैसे भक्ति मार्ग में आप रमे, कैसे इस मार्ग पे आए और कैसे इस्कॉन का एक हिस्सा बन के आप गीता के प्रचार प्रसार में अपने आप को शामिल करने के बारे में सोचा?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैंने 13 साल इंडस्ट्री में जॉब किया, पूरी दुनिया में जाके आया, लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने हर जगह देखी और वो थी हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुश नहीं है। मेरा सफर हुआ उस खुशी के पीछे भागने की। पेशे में तो मैं भागता रहा और अपने आप को एंजॉय किया, लेकिन जब उस खुशी की दौड़ में भागा तो मुझे एहसास हुआ कि पेशे से पूरी बात नहीं बनेगी, थोड़ी सी कमी है। उसको पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है, जब हम कोई इच्छा करते हैं तो पूरी प्रकृति और भगवान सब मिल के हमारे लिए कार्य करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हाथ में श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज मेरे हाथ में आई, और उसको क्योंकि एज एन इंजीनियर मुझे रिसर्च में बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, भगवद गीता पढ़ना शुरू किया इसी एटीट्यूड के साथ, स्क्रूटिनाइजिंगली, इसमें कुछ गलती हो सकती है चलो पकड़ते हैं,
0: क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: एग्जैक्टली, गलती तो नहीं मिली लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया और इससे मैं भक्ति योग में जुड़ा।
0: किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप?
1: जब हम देखते हैं भगवद गीता हमें बताती है कि आप इस संसार में जब भी जितनी भी खुशी, किसी भी वस्तु में जितनी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, वो वस्तु आने वाले समय में आपको उतना ही दुख प्रदान करने वाली। उदाहरण देखिए, आप मान लीजिए बहुत 1-2 साल तक पैसा सेविंग करते हैं कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है।
0: जी जी।
1: और आप खरीद के आ जाते हैं शोरूम के बाहर निकलते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हैं और कार को आप जैसे ही टर्न मारते हैं और रोड पे आते हैं, अचानक से लेट से रिक्शा वाले ने आके स्क्रैच मार के निकल गया। तो बताइए वो स्क्रैच आपकी गाड़ी पे लगा या आपके दिल?
0: बिल्कुल दिल पे लगा।
1: तो इस गाड़ी में जितना और सुख दिया।
0: आपने तो मुझे कुछ याद भी दिलवा दिया कि बताएं। हम कहते हैं ना कि ओनली योर चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू हर्ट यू मोस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, जितना ख्याल उनका रखते हैं, जितनी खुशी वो हमें देते हैं, तो क्या एक वक्त पे वो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं और वो देते हैं।
0: अच्छा हमने भी दिया है, जब हम बच्चे थे तो हम भी अपने जो है माता पिता को पेरेंट्स को परेशान करते ही थे, तो दुख तो हमने भी दिया है। ये तो एक जनरेशनल प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है।
1: यस, आप देखेंगे कि जिससे जितना लगाव है उससे जितना प्रेम मिलता है उससे उतना ही क्लेश भी मिलता है।
0: ओके
1: राइट, ये केवल दूसरों की बात नहीं है, रिश्तों की बात नहीं है, स्वयं हमारा शरीर भी जितना सुख देता है वो जाते जाते उतना दुख भी दे के जाता है।
0: जी,
1: हमारा
0: जी।
1: मन जितना हमें सुख देता है उतना ही दुख भी जाता
0: है। देकर
1: बिकॉज इस संसार में एक कंसेप्ट है कि सुख के साथ दुख फ्री में मिलेगा, तो दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में हमेशा हमें ट्रेवल्स करना पड़ता।
0: तो ये कॉम्बिनेशन है, ये एक पैकेज है जो कि साथ में ही आएगा।
1: लेकिन भगवद गीता हमें बताती है कि सुख और दुख के ऊपर भी एक ऐसी दुनिया है, जब सुख के पीछे भागते तो दुख मिल सकता है, लेकिन हाँ। एक ऐसी दुनिया है जहाँ की अगर हम सुख के पीछे भागेंगे तो सुख बढ़ता चला जाए, और उसको कहते हैं वो एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ये दो पोल्स के बीच में दुनिया नहीं चलती। जब सुख के पीछे भागते हैं तो बढ़ता जाता है, और उसको सुख नहीं बोलते, उसको आनंद कहते हैं।
0: आनंद कहते हैं।
1: इस आनंद की खोज हमने शुरू करी और ये बढ़ता चला गया।
0: तो किस प्रकार का आनंद है ये जीव गोपाल दास जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम भी उस आनंद की अनुभूति करना चाहेंगे आपकी मौजूदगी के साथ में?
1: ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और भगवद गीता बताती कि ऐसे प्रश्न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अगर इसलिए आप सबके मन में भी यही प्रश्न है कि हम कैसे इस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ABCDE फॉर्मूला देंगे। ए फॉर्मूला इज ऐसे लोगों के साथ पहले एसोसिएट कीजिए जो कि इस आनंद की खोज में हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर नहीं बनते अगर वो हॉकी के मैदान में जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं।
0: जी,
1: विच मीन्स कि उन्हें क्रिकेट के एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन चाहिए था और एक समय उन्हें चाहिए था, और एक ऐसा समय आया जब दूरी दुनिया उनके एसोसिएशन के पीछे दीवानी थी। सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: यानी जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें बनाने में, हमारी पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने में।
1: एग्जैक्टली, आप देखिए कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर होना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और बताने आजकल कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, इनसे दूर होना चाहता हूँ। परंतु वे दूर नहीं हो पाते, प्रयास करते हैं, हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब नहीं करूंगा, ये आदतें मैं छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि ऐसे लोगों का एसोसिएशन नहीं लेंगे जो कि छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सीरियस प्रयास
0: कर रहे हैं, या इस प्रकार के वातावरण में रहते ही नहीं है, उसका प्रयोग करते ही नहीं है।
1: एग्जैक्टली
0: मैम। तो देखिए, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है हमारा, और इसके जो श्रोता है वो काफी हद तक एक छात्र कम्युनिटी भी है, स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, तो खास तौर पे मैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बात आपसे पूछ रही हूँ कि समय के साथ में कई बारी हमारे वातावरण के भी प्रभाव में आके हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलने का भक्ति साधना में क्या जरिया हो सकता है?
1: आपका ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा यू नो स्पिरिचुअलाइज्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बट देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं कि नहीं।
0: जी।
1: सो फर्स्ट थिंग इज, अगर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसे हैं तो उन्हें सबसे पहली चीज ये सोचनी चाहिए थी क्या वे बदलना चाहते हैं। अगर उनके अंदर से प्रश्न आता है मैं बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों से एसोसिएशन लेना पड़ेगा जो कि अपने जीवन को बदल चुके हैं। मैं एक सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, 1966 में वो न्यूयॉर्क पहुंचे, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो उनके गुरु ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि जाकर आपको विदेशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है भगवद गीता और भागवत धर्म का।
0: जी।
1: तो इसीलिए वे पहुंचे वहां पर, और वहां उन्होंने देखा कि समाज में कोई नियम ही नहीं है। एडिक्शन तो छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई ऐसा एडिक्शन नहीं था जो वो करते थे।
0: जी।
1: नहीं करते थे। परंतु शिला प्रभुपाद ने उनको एक चीज दी, जैसा हमने डिस्कस किया एसोसिएशन, संघ प्रदान किया। किसका संघ दिया? शिला प्रभुपाद भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने शुद्ध भक्त जब किसी व्यक्ति को संघ प्रदान करता है तो किस प्रकार से उनके जीवन में चेंज आया। अब देखिए, ऐसे लोग जो कि एडिक्शन से बाहर नहीं आना चाहते थे, कृष्ण का नाम जीवन में कभी सुना नहीं
0: जी,
1: लेकिन वे भक्ति योग को इतना सीरियसली प्रैक्टिस करने लगे कि सुबह 4 बजे उठते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, भगवद गीता पढ़ते ही नहीं थे, जाकर भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे ज्यादा से ज्यादा। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने कृष्ण का नाम नहीं सुना, भगवद गीता का भी सुना नहीं है, वो भगवद गीता के डिस्ट्रीब्यूशन को कर।
0: बल्कि मेरा अपना एक पर्सनल जो है अनुभव कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, कि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ तो गीता हमारे जीवन का एक आधार है, है ना। लेकिन अगर हम विदेश की बात करें तो उनका जुड़ाव तो आप छोड़िए, कि आपने जैसे कहा कि उन्होंने कभी धर्म का नाम ही नहीं सुना था इस प्रकार का, तो उनका जो भक्ति भाव हम देखते हैं वो हमें बहुत इम्प्रेस करता है, कि कैसे एक इंसान एक डिफरेंट कल्चर से आकर उठकर दूसरे कल्चर में किस तरीके से अपने आप को जो है वो समाहित कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो असर आप बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है, किस प्रकार से ये हम किसी व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि आप इस भक्ति भाव की तरफ जाएं, आप एडिक्शन से जो है बाहर निकलें, और क्या क्या जरिए हो सकते हैं इसको अपनाने के?
1: सबसे प्रमुख, मैम आपने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न किया है, सबसे प्रमुख चीज जो व्यक्ति को जानना चाहिए, अपनी सही पहचान को
0: जी।
1: हमारी सही पहचान का अर्थ है कि क्या जो मैं रोज सुबह ब्रश करते हुए आईने में देखता हूँ,
0: हाँ,
1: क्या मैं यही हूँ? कहने का तात्पर्य ये है,
0: यानी हमारा क्या शरीर ये हमारा ही है या हम ही शरीर के ही हैं,
1: या मैं शरीर हूँ भी कि नहीं,
0: हूँ भी कि नहीं।
1: फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह देखिए, अगर ड्राइवर कहे कि मैं ही गाड़ी हूँ,
0: हाँ,
1: तो क्या ये सही होगा?
0: हाँ।
1: तो ड्राइवर तो गाड़ी नहीं होता,
0: नहीं हो सकता।
1: गाड़ी केवल एक माध्यम है लक्ष्य तक पहुँचने के लिए
0: जी।
1: इसी प्रकार से ये शरीर हम नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता हमें बताती है कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर को चलाने वाले ड्राइवर अर्थात आत्मा है, और उस आत्मा की पहचान अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिर आप केवल इस शरीर को जैसे चलाना चाहें, अपने मन और बुद्धि को जैसे चलाना चाहें, इसको चला सकते हैं। मन तब परेशान करता है जब आप सोचते हैं मैं मन हूँ। जब आप मन को बोलेंगे कि तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, तुम मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे मन हो, मैं मन नहीं हूँ, जब मन को स्वयं से अलग कर वो व्यक्ति देखने लगता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि आप सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये प्रश्न पूछना चाहिए, सही क्या नहीं है? आप शरीर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, या बुद्धि की बात कर रहे हैं? कि आत्मा तो हमेशा सही है,
0: सही है बिल्कुल।
1: तो जब पता चला कि प्रॉब्लम तो मन में थी, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस पे काम करते हैं। लेकिन वो मन मैं ही मान लूंगा ना, तो मेरा अहंकार इसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मानने नहीं देगा, और मेरा अहंकार मुझसे कहेगा अरे मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। और यहाँ हम सुधार करने के लिए तैयार नहीं, कितना ही बुरा एडिक्शन हो हमारे जीवन में
0: जी।
1: लेकिन वो सुधारा जा सकता है अगर हम एक्सेप्ट करें कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, हमसे जुड़े एक एलिमेंट में, तत्व में है। गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको सुधार सकते हैं, ड्राइवर में प्रॉब्लम है तो मुश्किल हो गया ना। इसलिए मन को अपने से अलग कर देख कर और फिर उस पर कार्य करें, बड़ा आसान।
0: तो ये जो आप कह रहे हैं कि शुरुआत करें अपने मन पे काम करने की, उस मन पे काम करने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है?
1: मन को क्या अच्छा लगता है वो करिए, कितना आसान हो गया ना।
0: जो मन करे,
1: नहीं मन
0: जहाँ मन जाए, क्योंकि मन तो एक चंचल है। अक्सर हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, ये शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इनका मन के लिए, तो उस चंचला को भी तो नियंत्रित करना जरूरी होता है।
1: आप अगर स्प्रिंग को दबाएंगे, एक साल तक दबाए रखेंगे, तब भी वो उछल के रिएक्ट करेगा। मन भी बेचारा ऐसा ही है, उसमें इसकी क्या गलती, उसकी प्रकृति ऐसी। मन में 3 चीजें होती है, थिंकिंग अर्थात सोचता है, फीलिंग अर्थात कुछ महसूस करता है, और इंटेंशनैलिटी यानी कि कुछ करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। अब ऐसे में जो दूसरा मैंने पार्ट, मन के अंदर फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ महसूस करना चाहता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वो करता है ना। तो अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, देखिए 2 चीजें मन एंजॉय करता है, एक तो या तो आध्यात्म में बढ़कर अपने आप को कंट्रोल कर लेगा
0: जी,
1: या फिर यू नो भौतिक विषयों में एडिक्शन में कहीं ना कहीं फंस जाएगा।
0: और भौतिक भी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एडिक्शन जो कहते हैं कि हर व्यक्ति एडिक्टेड है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्कोहल एक एडिक्शन है या ड्रग्स एक एडिक्शन है। मुझे कई बार लगता है कि चाय भी एक एडिक्शन है, जो अब मेरे जैसे भारतीयों को बहुत विचलित करती है। बार बार किसी से बात करने की इच्छा होना, मन को खाली करना, वो भी एक एडिक्शन है। कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलाते हैं अपने आसपास, वो भी एक एडिक्शन है कि उनको उस तरह की बातें करने की आदत हो गई है। तो ये जो एडिक्शन है, जो खास तौर पे हम जिस पे बात कर रहे हैं, तो भक्ति मार्ग में उससे निकलने का क्या तरीका बताया गया? उस मन को नियंत्रित तो नहीं करने की बात कहूंगी मैं अब, क्योंकि आपने कहा जितना नियंत्रित करेंगे वो उतना बेकाबू होता चला जाएगा, तो उसको सही मार्ग पर लेकर आने का क्या तरीका हो सकता है?
1: वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। अब अगर दूसरे स्टेप पे आगे बढ़े, कंट्रोल मत करिए, फोर्स मत करिए मन को, मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं ना।
0: हाँ।
1: तो हम लाइफ में अगर एनवायरनमेंट ऐसा रखें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना,
0: हाँ,
1: सुबह वॉक पे जाना,
0: हाँ,
1: सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना, अच्छा क्वालिटी का भोजन लेना,
0: हाँ,
1: केवल जिह्वा की तृप्ति के लिए रोज पिज्जा बर्गर नहीं खाना, तो कहने का तात्पर्य अगर अच्छी आदतों में भी मन को अच्छा लगने लगे तो करने लगेगा,
0: करने लगेगा।
1: तो मन को ये कन्विंस करना और उस ज्ञान के स्तर पर लाना कि अच्छी चीजें अच्छी,
0: तो यानी मन को भी हमें कन्विंस करना होगा, बच्चे की तरह समझाना होगा उसको कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है ये बुरा है,
1: उसके इमोशंस में अच्छी चीजों को भरना है।
0: हाँ।
1: जैसे कि जब टंकी में,
0: हाँ,
1: पानी गंदा होता है,
0: हाँ, हाँ,
1: तो हम टंकी पूरी इतनी बड़ी टैंकर साफ करने तो नहीं जाते,
0: नहीं जाते,
1: हम क्या करते हैं,
0: फिल्टर लगा देते हैं।
1: हाँ। हाँ, फिल्टर भी लगाते हैं और एक और चीज करते हैं, ऊपर
0: हाँ,
1: से साफ पानी चालू करते हैं,
0: हाँ,
1: और नीचे से गंदे पानी को निकलने का रास्ता खुला छोड़ देते हैं।
0: हाँ।
1: जैसे ही गंदा पानी निकलता जाता है, पानी साफ हो जाता
0: हो जाता है।
1: कहने का तात्पर्य, अच्छे विचारों को, सात्विक विचारों को मन में आने दें, भगवद गीता के उत्तम विचारों को मन में आते रहने दें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन में जगह तो उतनी है ना। जैसे अच्छे विचार अंदर आएंगे, जो पुराने विचार हैं, दुखित विचार हैं, धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे,
0: बाहर होते
1: कुछ समय में आप देखेंगे मन में अच्छे विचार ज्यादा हैं और स्वयं अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते।
0: अक्सर कहा जाता है कि मेरा मन नहीं लगता है ना, और जैसे हमारे बॉलीवुड ने मन को बड़ा रोमांटिसाइज भी कर दिया है कि मेरा मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है, या मन जो है वो अकेले खुशी नहीं देता है, किसी और के साथ खुशी नहीं देता है। तो मन लगाने का क्या तरीका है भक्ति मार्ग में, मन को हम कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से जो है वो, जैसे आप एक तरीका आपने सुझाया कि सुबह समय से उठें और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
1: इस पे दो प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ, पहला ये कि मन को कैसे हम अध्यात्म में लगा सकते हैं
0: जी।
1: और बॉलीवुड ने जिस प्रकार से,
0: हाँ,
1: मन को या दिल को,
0: हाँ,
1: जिस प्रकार से रोमांटिसाइज किया है,
0: हाँ,
1: उसी को यूज कर लेते हैं। जब किसी से प्रेम होता है, यू नो, आप देखिए बॉलीवुड में भी,
0: हाँ,
1: या हॉलीवुड में भी,
0: हाँ,
1: लव जो होता है, प्रेम होता है
0: जी,
1: वो वन साइडेड होता है, एक तरफा होता है,
0: एक तरफा है।
1: कहने का तात्पर्य है,
0: हाँ,
1: कि उसे एक तरफा ही रखे ना, बट प्रॉब्लम,
0: लेकिन क्या एक तरफा जो प्रेम है, क्या वो पूर्ण प्रेम कहा जा सकता है, क्या वो फुल सर्कल है?
1: यस, वही पूर्ण है। यही मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि एक तरफा लव ही, प्रेम ही जो है पूर्ण है,
0: हाँ,
1: जब दो तरफा से हो जाता है
0: तो
1: उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है, मैं कुछ आपके लिए करता हूँ, आप मुझे बदले में कुछ देंगे, ये तो बिजनेस हो गया,
0: ये बिजनेस हो गया।
1: प्रेम तो केवल एक तरफा ही होता है,
0: यानी अपेक्षा रखना जो है वो बिजनेस है।
1: एग्जैक्टली, अभी हम भक्ति योग में यही करते हैं कि भगवान से कहते हैं, एक संस्कृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है
0: जी।
1: उसकी छोटी सी पंक्ति ऐसी है
0: जी।
1: यथा तथा वा विदधा तुलम पटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। व्हाट इज द चैतन्य महाप्रभु सेज,
0: हाँ,
1: महाप्रभु सेज कि देखिए,
0: हाँ,
1: भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ,
0: हाँ,
1: मैं आपकी प्रेम से सेवा कर रहा हूँ
0: जी,
1: आप मेरे साथ कुछ भी करिए,
0: समर्पण,
1: आप कुछ भी करिए मेरे
0: जी,
1: साथ
0: जी,
1: कितने
0: जी
1: ही बुरे दिन दिखाइए, लेकिन ये मेरी परीक्षा है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप ही मेरे प्राणनाथ
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी।
1: जब हम ऐसा कह देंगे तो स्वार्थ से हम बाहर निकलने के लिए अपने आप को खोल देते हैं,
0: खोल देते हैं, यानी प्रभु को समर्पित कर दें हम स्वयं को।
1: एक जगह प्रेम है और दूसरी तरफ काम है। बॉलीवुड में काम को प्रेम की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में होता है वो इन दोनों को अलग अलग करके देख पाता है, और वो शुद्ध प्रेम से बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगा रहता है, उससे जो आनंद आता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कामवश व्यक्ति किसी प्रेम में फंसा है, काम में फंसा है, तो थोड़े दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हम जब काम की भावना से किसी रिलेशनशिप में या मैरिज में या किसी भी रिलेशनशिप में जब घुसते हैं
0: जी,
1: तो उस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन
0: इट डजंट लास्ट लॉन्ग
1: यस और जब निस्वार्थ सेवा में जाइए उस रिलेशनशिप में वो पूरे जीवन आपके साथ चाहिए।
0: तो ऐसा कोई मार्ग जैसे अक्सर हमने सुना है कि आपने कहा दो तरीके हो सकते हैं मन को जो है वो सही रास्ते पे लगाने के, एक मेडिटेशन हो सकता है अगर हम करें तो मन नियंत्रित रहेगा, दूसरा तरीका भक्ति मार्ग भी हो सकता है। तो क्या ये दो अलग अलग तरीके हैं और हैं तो किस प्रकार से ये हमारे शरीर और मन पे काम करते हैं?
1: ओके, तो इसमें हम क्विकली अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भक्ति क्या अलग से करनी पड़ती है या हमारे अंदर है।
0: जी
1: सो अगर शॉर्ट में बोले तो एक बच्चा माँ से बच्चे का क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता है ये माँ और बच्चे का?
0: एक जुड़ाव है, एक ममता। ममता
1: में प्रेम है।
0: जी जी।
1: तो ये प्रेम का बच्चे का और माँ का जो रिश्ता है
0: जी जी,
1: इसमें जब माँ को बच्चे से प्रेम होता है तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बच्चे को सर्व करती है।
0: जी जी।
1: एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा उसके पंख
0: निकल
1: जाते हैं, निकल जाते हैं और वो उड़ना चाहता है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, जा तू उड़ और अपने जीवन में यू नो सक्सेस को, सफलता को प्राप्त कर। वो रोती है, अंदर ही अंदर रोती है, लेकिन वो निस्वार्थ होती है। ये माँ का प्रेम
0: बांधता नहीं है, यानी प्रेम कभी बांधता नहीं है हमें किसी रिश्ते में या फिर
1: दूसरे रिश्ते के बारे में सोचता है कि ये कितना अच्छा करेगा इस प्रेम में। अपने स्वार्थ से बाहर निकल के व्यक्ति
0: निकल के सोच पाता है
1: और यही भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है और हम भगवान का अंश है। जैसे कि शरीर से माँ ने हमें जन्म दिया है, वैसी आत्मा रूप में इस आत्मा को भगवान ने जन्म दिया है। भगवान का अंश है ये आत्मा। तो उस एंगल से हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता हुआ? प्रेम का
0: रिश्ता।
1: और प्रेम का रिश्ता है तो क्या करेंगे? हम उनकी सेवा करेंगे। शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है,
0: साथ में रहेगी।
1: तो बिल्कुल हमारा इटर्नल शाश्वत रिश्ता है भगवान से प्रेम का। और यही अगर हम प्रेम भगवान से करते हैं तो भक्ति हमारे जीवन का अंश है, अलग से नहीं करनी है।
0: जी जी। और ये जो मार्ग है इस पे चलने में परिवार का, हमारे आसपास के घर का माहौल का कितना असर पड़ता है?
1: जैसे हमने कहा कि शरीर जो है बदलता रहता है, आत्मा का पिछले जन्म में तो कोई घर था। अगर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है
0: जी
1: भक्तियों को,
0: हाँ।
1: इस जन्म में आकर उसको अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता,
0: हाँ।
1: तब भी वो फेवरेबल एनवायरनमेंट बना लेता है या उस फेवरेबल एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये नेचुरल है हमारे साथ। अगर मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा तो अपने आप क्रिकेट के ग्राउंड में मिलूंगा मैं आपको। वैसे जिसका भक्ति योग, जिसने पहले भी पिछले जन्मों से भक्ति करी अभी पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण करने के लिए वो अगले जन्म में भी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के पहुंच जाएगा।
0: यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनसे पहली बार नहीं मिले, मिलते ही जैसे आज आपसे मुझे मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले भी मिली हूँ। तो ये एक हमारा रिश्ता होता है जो हम कभी पहले किसी और जन्म की जब हम बात करते हैं, या आप कहिए कि लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं, तो उनका मन को एक दूसरे को आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि आप जो बात करें वो मेरी समझ में आ रही है और जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो आप उस भाव को समझ पा रहे हैं। तो ये रिश्ता बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। मैं जीव गोपाल दास जी एक ऐसी समस्या की बात करूंगी कि जो हमारा जो युवा वर्ग है खास तौर पर वो बहुत जूझ रहा है समस्या से, और ये समस्या ऐसी है कि मुझे लगता है कि जिसमें शायद उनकी ज्यादा गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनको पोस्ट करना होता है, लाइक करना होता है, दोस्तों ने लाइक नहीं किया, या फिर रात भर जो है गेम खेलते हैं, सुबह पेरेंट्स जो है वो शिकायत करते हैं कि सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, स्कूल में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, एग्जाम्स के समय पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें हैं उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो क्या भक्ति मार्ग में ऐसा कोई रास्ता है जिसके द्वारा जो है वो अपने इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं?
1: यस, अभी हमने जैसे चर्चा किया कि भक्ति करनी नहीं होती,
0: हो जाती है,
1: हमारे अंदर
0: होती है।
1: इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ कि एक मछली से कहा जाए कि आपको पेड़ पे चढ़ के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना है, और बंदर से कहा जाए कि पानी में आपको एक घंटे तैर कर फर्स्ट आना है, तो दोनों के लिए अननेचुरल है, अप्रकृतिक है, प्रकृति के उनके विरुद्ध है।
0: बिल्कुल।
1: सो भक्ति योग हमें ये बताता है कि आपकी जो प्रकृति है उसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे आपने देखा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था
0: जी,
1: अब 10-12-13 साल जॉब करने के बाद अगर मैं भक्ति में आता हूँ तो क्या मुझे अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? डेफिनेटली यस। और इसी तरह से हम शारदा यूनिवर्सिटी में कुछ समय से एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं
0: जी,
1: और ये प्रोग्राम बड़ा सुंदर है
0: जी हाँ। और मैं खास तौर पे इस प्रोग्राम पे अभी आने ही वाली थी, क्योंकि इसके बारे में भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि किस रंग में ये प्रोग्राम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे छात्रों को, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, और कुछ ऐसे उदाहरण अगर आंखों के सामने आप देख पाते हैं, कोई ऐसे एग्जांपल कि बच्चों के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है इससे, तो वो मैं जानना चाहूंगी।
1: राइट मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सो नेचुरली हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती हैं। जैसे कि जैसे ही हमने यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को शुरू किया, हम शुरू में कीर्तन करते हैं विद म्यूजिक एंड डांस, तो उसके साथ साथ म्यूजिक डांस के साथ जब हम इस कीर्तन को करते हैं, तो अपने आप ही नेचुरली कुछ स्टूडेंट जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिनको डांस अच्छा लगता है, स्वयं अपने आगे आ गए, उन्हें कहा हम भी कीर्तन करना चाहेंगे सो उनके अंदर वो उनका नेचर था, हमने उनको एक चैनलाइज किया।
0: जी जी,
1: ऐसी कुछ स्टूडेंट्स आए बोले कि सर हम इंजीनियरिंग में हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जो मैंने किया, मैंने इस प्रोफेशन से सीखा और मैं अभी उसी टैलेंट को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। हमारे आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस को भी जो है टेक्नोलॉजी में का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, अर्थात ये टेक्नोलॉजी जो हमें दे सकती है वो हमें भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन बच्चों ने कहा यस सर हम भी करना चाहेंगे, आप आइए इंटर्नशिप करिए हमारे साथ में और अच्छे से एक्सपोजर लीजिए। बच्चे बिल्कुल खुश हो गए, बोलते हैं यस सर हम करना चाहेंगे। उन्होंने अपना डिटेल्स दिया कि भाई आप ये रहा हमारा सीवी, आप तो प्लीज इसको परस्यू करिए। कुछ स्टूडेंट्स आए बोले सर मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा आप क्या कर सकते हैं, आप सोचिए आपका नेचर क्या, आपकी प्रकृति क्या है, और आप भगवद गीता में बताती कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अर्जुन के अंदर तीर चलाने का टैलेंट था, उसको भगवान की सेवा में लगाया, वैसे आपके अंदर जो भी टैलेंट है अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे, तो वो आपके बंधन का, इस संसार में बंधन का कारण बन सकता है। अगर पूर्ण रूप से मुक्त होना है तो जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसलिए स्टूडेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये म्यूजिकल अवेकनिंग का जो प्रोग्राम है एवरी ट्यूजडे इवनिंग 4 PM शारदा यूनिवर्सिटी के टेम्पल में हॉल में होता है, और वो आकर जरूर अटेंड करें। वहाँ आप अपने टैलेंट को फ्रीली कैसे आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, मंदिर वो है जो आपके अंदर के नेचर को बाहर निकाल कर लाए, ताकि आप अंदर और बाहर दोनों तरफ सफाई से देख सके। ये हम
0: सो अध्यात्म हमें वो क्लैरिटी देता है कि हम अंदर और बाहर अच्छे से देख पाते हैं, डिफरेंस समझ पाते हैं।
1: हाँ, आप देखिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसका टैलेंट जो था वो तीर चलाने में था, और भगवान ने उसे कहा तुम्हारा टैलेंट है तीर चलाने का, तो उसे ही भगवान की सेवा में लगाओ, अलग से जाकर कहीं योग और ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है।
0: जी,
1: यही भक्ति योग,
0: यानी अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दे, जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, कर्म करते जाए और भक्ति भाव से अपने कर्म को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो ये जो समर्पण की जो भावना अगर हमारे अंदर रहेगी, तो ये स्वयं ही हमें भक्ति मार्ग पे ले जाएगी।
1: जी,
0: और जो तनाव, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम स्वयं ही इससे बाहर निकल पाएंगे।
1: यस मैम, बहुत सुंदर कहा। इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा
0: जी
1: कि हमें किसी ना किसी को गुरु तो हम बना ही लेते हैं, या तो भगवद गीता को अपना गुरु बना ले, या मन को गुरु बना ले। मन को बनाएंगे तो वो क्या करवा रहा है ये तो हमने देख लिया। एक बार भगवद गीता को गुरु बना के देखिए।
0: तो जो गुरु की जो एक कंसेप्ट हमारे धर्म में मौजूद है, हमारे पुराणों में मौजूद है, तो वो गुरु ही हमें जो है आगे लेके जाते हैं, हमारे सूत्रधार बनते हैं जीवन के।
1: यस, भगवद गीता 4th chapter में भगवान इसको कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनाम् तत्वदर्शिना। जिसने तत्व को देखा है वो आपको तत्व के बारे में बता सकता है। आपने बस 3 चीजें करनी है, जाके समर्पित करना है, दूसरा प्रश्न पूछना है, तीसरा थोड़ी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव। और इसी की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितना आनंद मुझे, जैसे आनंद की अनुभूति मुझे हुई है इस कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए, आप सबके बीच लेके आते हुए, उतनी आनंद की अनुभूति आपको सुनने में भी ज़रूर प्राप्त हुई होगी। तो अभी है हमारे साथ में जीव गोपाल दास जी, जो कि अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और गीता दर्शन के लिए और इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाला और हमें, हमारे छात्रों के साथ में, हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के साथ में सुनो शारदा 90.8 FM पे हमारे बीच में ये कुछ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते रहेंगे दोबारा से। फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से आपके विचारों को हम सुनो शारदा पे दोबारा से जो है प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद
1: इस प्लेटफॉर्म पर गीता के विचारों को व्यक्त करने का जो आपने मौका दिया। बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। भाई मैं हूं थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूं अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: द वर्ल्ड इज हियर।
4: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से मैं हूं गगन आपके साथ। आज क्या है, आज हमारे साथ कौन खास जुड़ रहे हैं, कौन मेहमान है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकारिता जगत से, आप पत्रकार हैं, अतुल शाह जी आपका नाम है, और बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। इनसे हम जानेंगे इनके अनुभव के बारे में, इनके इस यात्रा के बारे में, और आज के समय में पत्रकारिता का क्या रूप है और आप क्या सोचते हैं आज के पत्रकारों के बारे में। ये सारी बातें होने वाली हैं आज के हमारे खास मेहमान जो कि अतुल शाह जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और बहुत कुछ जानेंगे। तो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिक और ब्रेक का, सो आप कहीं जाएगा मत, जुड़े रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम है। हुनाचीज हर दिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पहले लिंक में हमने आपको बातें बताई कि आज हमारे साथ कौन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार पुनः बता देता हूं, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि पत्रकारिता जगत में काफी लंबा चौड़ा अनुभव है। 20 से 25 साल आपने पत्रकारिता जगत को दिए हैं। आपका नाम है अतुल शाह जी, और कहते हैं इनका इस्तकबाल करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि चार स्तंभ की बात होती है। पहली है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है
1: न्यायपालिका
0: और चौथी है पत्रकारिता। ये छोटी सी आवाज आपने सुनी तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल शाह जी। तो शाह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया है और मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए बहुत ही रोचक यात्रा होगी।
0: बेशक बेशक सर, हमें बड़ी खुशी है आपसे बात करके, खुद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चाएं होने वाली है, आपके अनुभव के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर, जब मैं अनुभव का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ तो पत्रकारिता जगत में आपने 25 साल, जैसे आपने हमें बताया 25 साल का जो अनुभव है, वाकई बहुत बड़ा अनुभव है। तो ये जो यात्रा अब तक रही है कैसी रही है आपकी?
2: बहुत ही शानदार यात्रा रही है, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैंने 1997 से दैनिक जागरण से अपना पत्रकारिता का सफर शुरू किया जो अनवरत 2021 तक जारी रहा,
0: सिर्फ एक संस्थान के साथ
2: जुड़ा रहा। और इसका एक खास कारण भी है कि बनारस में जो हमारे मुख्य संपादक हैं और दैनिक जागरण के निदेशक भी रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी, तो जब मैं अपने संस्थान में ब्यूरो चीफ था, मुझे किसी एक जगह पर एक पत्रकार की नियुक्ति करनी थी। मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आई थी, उसमें एक एप्लीकेशन थी जो मुझे सबसे ज्यादा अपील कर रही थी, और उन सज्जन ने 7-8 जगह काम किया था 10 सालों में। मैं बहुत ही उत्साहित होकर जब अपने निदेशक जी के पास गया और उनको बताया कि ये एप्लीकेशन आई है, किंतु मैं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ और इन्हें मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने उस एप्लीकेशन को देखा और मुस्कुराए, बोले जब ये 7 जगह नहीं टिका तो तुम्हारे पास क्या टिकेगा।
0: जी।
2: तो मुझे समझ में आया, टिकना भी जरूरी है, स्थायित्व से ही आपको जो है पहचान मिलती है। और निसंदेह हिंदी की पत्रकारिता में दैनिक जागरण नंबर एक रहा है, तो उस मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था कि मैं किसी नंबर 2 अखबार में जाऊं। और मेरी बहुत ही मनमोहक यात्रा रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है
0: जी,
2: और समाज को जानने को मिला है, और मैं बहुत खुशनसीब लोगों में से हूँ जो मैं कुछ लोगों के लिए कर भी पाया।
0: क्या बात है। सो ये एक छोटा सा परिचय हमारे जो खास मेहमान है अतुल शाह जी, जो कि पत्रकारिता जगत में 25 साल का अनुभव है, और सबसे खास बात यह है कि एक संस्थान को ही इन्होंने 25 साल दिए हैं और संस्थान ने भी इनको बहुत कुछ दिया है। ये हम कह पा रहे हैं, इसलिए कह पा रहे हैं कि स्थायित्व, यानी कि एक जगह लगकर जब आप काम करते हैं तो आपकी एक पहचान बनती है, आपका एक नाम मार्केट में जाता है और लोग आपको जानते हैं, और जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आपको हाथों हाथ दिया जाता है, आपका स्वागत इस्तकबाल किया जाता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ और जानेंगे हमारे खास मेहमान जो कि आज जर्नलिस्ट हैं अतुल शाह जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है, जर्नलिस्ट हैं आप है अतुल शाह जी, दैनिक जागरण के साथ आप 25 साल का आपका एसोसिएशन रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आप स्वतंत्र रूप से पत्रकार है यानी कि फ्रीलांसर काम करते हैं। और फ्रीलांस जब काम करते हैं तो क्या क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, सम्मान कितना मिलता है, और फ्रीलांस की जब बात आती है और जो एक व्यक्ति एक संस्था के साथ जुड़कर काम कर रहा है तो उसमें क्या अंतर है? सर मेरा सवाल आपसे ये है,
1: जब आप किसी संस्थान के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ बहुत सारी प्रतिबद्धताएं भी रहती हैं, लिमिटेशंस भी रहती हैं, और आपको उनकी नीतियों के अनुसार ही कार्य करना होता है। जब मैं फ्रीलांस करता हूं तो फ्री लगा ही हुआ है, मैं स्वतंत्र हूं।
0: क्या बात
1: मेरी सोच, मेरी लेखनी, मेरी कलम सब स्वतंत्र है, मैं किसी भी विषय पर लिख सकता हूं। मुझे अब ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे लिखने से कहीं मेरे संस्थान को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और आप जानते हैं कि यह व्यावसायिक दौर है, सभी संस्थान को अपने व्यावसायिक हितों को भी साधना पड़ता है, लेकिन अब मेरे साथ वो सारी लिमिटेशंस नहीं रह गई हैं। और फिर भी जब आप किसी संस्थान से जुड़े होते हैं तो आपकी एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है, और आपको बताना नहीं पड़ता है कि आप क्या हैं। चूंकि अब हम 25 साल से जुड़े हुए हैं और इतना अनुभव है और छोटे से क्षेत्र में काम करते हैं, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब मेरी खुद की पहचान है।
0: क्या बहुत खुश।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे साथ काम किए हुए लोग और मेरे अंडर में काम किए हुए लोग आज सभी वहां के जितने भी नामी अखबार हैं उसके ब्यूरो चीफ हैं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूब।
1: तो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही है, या मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे साथ मेरे अंडर में काम किए लोग आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं,
0: पहुंचे हुए। असर आपने तो अपना अनुभव साझा किया। असर हम समाज में ये भी देखते हैं कि लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं, लेकिन उनकी पास्ट में कोई पहचान रही नहीं है जिसकी वजह से उनको आगे तवज्जो नहीं मिल पाती, या यूं कहें कि वो संघर्ष कर रहे होते हैं। तो मैं समझ सकता हूं आपसे बात करकर कि सबसे पहले आप अपनी पहचान बनाइए, उसके बाद फ्रीलांस काम करना चाहते हैं या अपना संस्थान खोलना चाहते हैं, तब जाकर आपकी मार्केट वैल्यू होती है। क्या कहना चाहेंगे?
1: निश्चित, लेकिन प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्षमता है, तो भले थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपको आपकी पहचान अवश्य मिलेगी। आप संस्थान से अगर जुड़े होते हैं तो ये काम आपको थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको एक बड़ा बैनर मिलता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, और आप अपने आप करते हैं तो थोड़ा आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको अपना प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि लिसनर्स, बातों बातों में एक बात निकल कर यही सामने आई है कि टैलेंट यानी कि क्वालिटीज, प्रतिभा अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पर दिक्कत परेशानी आपके सामने जरूर आएंगी, लेकिन शनै शनै धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर। वो प्रतिभा, वो क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए एक पत्रकार के अंदर, सच्चे अच्छे पत्रकार के अंदर, ये हम जानेंगे जरूर सर से, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दैनिक जागरण में 25 साल तक जुड़े रहे, आप हैं अतुल शाह जी, बड़े ही अच्छे पत्रकार हैं, बड़े ही अच्छे इंसान हैं। तो ये बातों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है अतुल शाह जी, जो कि बहुत अच्छे पत्रकार है, बहुत अच्छे इंसान है और दैनिक जागरण के साथ आपका एसोसिएशन 25 सालों का रहा है। तो इतने गुणीजन जब लोग हमारे सामने आते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होता है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इशारा किया था, चूंकि सर ने जब बात रखी थी कि प्रतिभा क्वालिटीज गुणों के बारे में बात हो रही थी, तो सर मैं यही जानना चाहता हूं कि एक अच्छे पत्रकार के अंदर, सच्चे अच्छे पत्रकार के अंदर वो कौन कौन सी प्रतिभाएं होनी चाहिए, वो कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसे हम कह सकते हैं कि वो पत्रकार है, उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते।
1: सबसे पहले सब तो ईमानदारी आता है, जो पत्रकार में नहीं समाज के हर विधा हर अंग में होना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत
1: और हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो अपने कार्य को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और पत्रकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ईमानदार हों और ईमानदारी से काम करें, आईने की तरह एकदम स्पष्ट हों। और फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से शरीर के लिए चिकित्सक बहुत जरूरी होता है, उस तरह से समाज के लिए एक पत्रकार की भूमिका होती है। लेकिन हम धीरे धीरे मिशन से प्रोफेशन के उस दौर में पहुंच गए हैं कि जैसे आज आपके पाठक को क्या चाहिए, आप इस पे फोकस करते हैं
0: जी।
1: आप ये फोकस नहीं करते कि उसे क्या चाहिए होना चाहिए। जैसे किसी डॉक्टर से मरीज उम्मीद करता है कि उसे मीठी दवा दी जाए
0: जी।
1: लेकिन अगर डॉक्टर जानता है कि इसे ऑपरेशन की जरूरत है, इसे इंजेक्शन की जरूरत है, इसे कड़वी दवा की जरूरत है, तो वो देता है। तो आजकल हमको पत्रकारिता में भी देख रहे हैं कि लोग पाठकों की रुचि के अनुसार चीजें उनको परोस रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आज समाज को किस चीज की जरूरत है। अगर हम उस दिशा में काम करेंगे तभी समाज का विकास कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ईमानदार होना चाहिए और देखना चाहिए कि हम समाज हित में क्या कर सकते हैं, वो हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए।
0: बहुत खूब सर, आपने जो बात कही वाकई बिल्कुल खरी बात है और सच बात है कि ईमानदार होना चाहिए। और किसी भी पेशे में अगर हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी जो खुशबू है वो फिजाओं में चारों तरफ फैलती ही फैलती है। आज के समय में हम देखें, पत्रकारिता ही क्यों, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई ईमानदारी के साथ काम नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानियां आ रही होती हैं और कहीं ना कहीं कहानियां बन रही होती हैं। चूंकि पत्रकारिता का विषय है और आप एक पत्रकार हैं, हम अक्सर ये देखते हैं कि पेड न्यूज की बात होती है, अगर हमें कुछ रुपया पैसा मिल गया तो हम खबर दबा देंगे, नहीं मिला तो शायद हम उस खबर को उछाल देंगे। ये मैं छोटे से लेकर बड़े बड़े संस्थानों की बात कर रहा हूं, यहां हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ना ही आप इस बात को यहां जिक्र करेंगे कि, लेकिन ये सच है कि इसके साथ ही मैं अगर दूसरी बात पर भी आता हूं कि अभी हम जो फ्रीलांस की बात कर रहे थे सर, चूंकि आपके पास तो अनुभव है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको वो बारीकियां पता है, वो एथिक्स पता है, वो मान मर्यादा पता है। मैं एक 12th पास हूं या ग्रेजुएट हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई साहब की इनकम हो रही है, भाई साहब अगर किसी का रिपोर्टिंग कर आ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं तो कुछ रुपए पैसे आ जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पत्रकारिता के क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनके पास जानकारी का अभाव है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे सर?
1: मैंने इससे पहले भी एक शब्द का प्रयोग किया था कि हम मिशन से प्रोफेशन के दौर में पहुंच चुके हैं।
0: ठीक है,
1: जब गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महापुरुषों ने पत्रकारिता शुरू की थी तो उनका एक जरूर सोच रही थी और जरूर एक उद्देश्य रहा था कि हमें पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं
0: जी।
1: और सिर्फ उस समय के उद्देश्य था कि हमको समाज के हितों के लिए काम करना है। आज ये सारा बिजनेस ग्लैमराइज हो चुका है, उसमें बाजारवाद बहुत बुरी तरह से हावी हो चुका है
0: जी।
1: आज जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें सम्मान मिलेगा, उन्हें सिर्फ
0: सेवा करनी है, ऐसा
1: सेवा
0: कुछ
1: करनी है, उन्हें सिर्फ ऐश्वर्य और उनकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे इसीलिए आज पत्रकार सम्मान खोते जा रहे हैं। 15-20 साल पहले जब हम लोग पत्रकारिता करते थे तो हम लोगों के लिए इतना सम्मान होता था कि कोई भी आयोजन या कोई भी सभा या कोई भी कार्यक्रम तब तक शुरू नहीं होता था जब तक पत्रकार नहीं पहुंच जाते थे।
0: सही कहा।
1: और कहीं भी अगर किसी भी यूनियन और मालिकों में बात हो रही है तो वो यूनियन चाहती थी कि पहले पत्रकार हों, मजदूर और मालिक में बात हो रही है तो लोग चाहते थे कि नहीं पत्रकारों की उपस्थिति में हो। और आज उल्टा हो गया है, पत्रकारों को देखते ही लोग मारो मारो भगाओ भगाओ
0: जी जी
1: चिल्लाओ चिल्लाओ का दौर आ गया है कि ये जो है
0: जिम्मेदार हम सभी हैं।
1: इसके जिम्मेदार पूंजीवाद और बाजारवाद है। और जब से पत्रकारिता जो है संस्थागत हो गई है और इसको व्यवसाय बना लिया गया है और ये सेवी में रजिस्टर्ड होने लग गई है, तब से इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। और जल्दी से इसका इलाज नहीं किया गया तो वह हम अपने सम्मान को खो देंगे जो हमें हमारे लोगों ने दिलाया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जल्दी से अगर इसका इलाज नहीं किया गया या ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं को नहीं रोका गया तो पत्रकारिता क्षेत्र से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। और यही होगा आगे चलकर कि पत्रकार को शायद कोई तवज्जो ना दे जो तवज्जो पहले मिला करती थी, कोई उनसे बात ना करे क्योंकि उनको पता है कि उल्टी सीधी खबरें छप जाती हैं, जो खबरें छपनी चाहिए वो खबरें नहीं दिखाते लोग। और जब चैनलों की हम बात करते हैं तो वहां पर मार धाड़ हो रही होती है, चीख चिल्ला के लोग बात कर रहे होते हैं, एंकर भी वही चीख चिल्ला के बात कर रहे होते हैं। और जब कुछ और घटनाएं सामने निकल कर आती हैं, एक अच्छी भूमिका होती है पत्रकार की, एक एंकर की, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, न कि आपस में वो मतभेद पैदा करे या मनभेद हो। चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम आपको मिलेंगे, यहीं कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो श्रद्धा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ। मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं, बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें हो रही हैं, क्योंकि पत्रकार का यही काम है कि वो बिंदास बात रखे, जमाने के सामने सच के साथ वो बातें हमारे सामने आए। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल शाह जी, जो कि 25 साल का अनुभव रहा है, दैनिक जागरण से आपका एसोसिएशन रहा है। बहुत सारी बातें हो रही है कि पत्रकार के अंदर वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, आज के समय में जो पत्रकारिता है वो कितनी बदल गई, ये सारी बातें हम सर से जान रहे हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि एक पत्रकार के अंदर ईमानदारी के साथ वो काम करेगा तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ सकता है, समाज में एक जागरूकता ला सकता है। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि जब हम ये देखते हैं कि किसी के पास अनुभव नहीं है और ज्ञान नहीं है पत्रकारिता का, और जिसकी एक गलती की वजह से दंगा भड़क सकता है, माहौल खराब हो सकता है। वर्तमान समय में हम ये भी देख रहे हैं, सरकार को हम यहाँ लाना नहीं भूलेंगे, कि सरकार ने शिकंजा भी कसा है। जो ऐसे YouTube चैनल्स हैं जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, तो उस संबंध में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहेंगे?
1: आजादी की अभिव्यक्ति का हम लोग देख रहे हैं कि अब दुरुपयोग होना शुरू हो गया है, जबकि इसकी सीमाएं बहुत पहले से निर्धारित है। और बचपन में मैंने किसी इंग्लिश लेखक की कविता पढ़ी थी और मुझे एग्जैक्ट उसका नाम भी नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें यह था कि आपकी आजादी का मतलब है कि आप अपनी छड़ी घुमाएं लेकिन वो किसी की नाक से न टकराए।
0: क्या बात है।
1: तो आजादी की अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि अभिव्यक्ति आप उतनी ही स्वतंत्र हैं कि जिससे दूसरा कोई हर्ट ना हो, आहत ना हो, किसी का नुकसान ना होता हो।
0: क्या बात, बहुत
1: गुण। और जो वर्तमान दौर में अभी पत्रकार बने हैं या आगे बनेंगे, उनके लिए मेरा एक ये संदेश है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या कहीं इंटरव्यू करने जाते हैं या रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो आपको पहले उसके बारे में पहले से स्टडी कर लेनी चाहिए। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आप किस क्षेत्र, वो किस क्षेत्र में है, उसके बारे में अगर आप जान के जाएंगे तो आप उससे बेहतर सवाल कर सकेंगे और वो जो बता रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
0: बहुत खूबसूरत।
1: और जैसे हम लोगों के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया था कि एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, उसी तरह से पत्रकार को भी जिसका इंटरव्यू लेने जा रहा है उससे उसके बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में उससे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो सामाजिक हो या वो राजनीति से संबंधित हो।
0: तभी बात करने में मजा आएगा,
1: तभी मजा आएगा। मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं नया नया पत्रकार हुआ था तो हमारे यहाँ उस समय के केंद्रीय कारागार मंत्री का हमारे क्षेत्र में दौरा हुआ था, हम भी उत्साहित थे और वो मंत्री जी भी नए नए बने थे, वो भी बहुत उत्साहित थे। मजेदार बातें हो रही थी। मैंने पूछा, मंत्री जी जब आपसे, आप कारागार मंत्री बने हैं तो आपने अपने कारागार के लिए क्या क्या किया है? वो बहुत उत्साहित थे, उन्होंने कहा कि हमने ट्रेमेंडस चेंज किए हैं, हमने अब कैदियों की सुविधा के लिए टीवी लगवा दिया है, उनको खाना अच्छा मिलता है, उनको दाल मिलती है, उनको रोटी मिलती है, उनको घी मिलती है, उनको मैगजीन मिलती है, हमने कूलर की व्यवस्था भी की है और हमने उनको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है, हफ्ते में एक दिन वो टीवी भी देख सकते हैं। मैंने कहा, मंत्री जी आपने तो इतना अच्छा काम किया है और हम जेल के अंदर इतनी सुविधाएं हैं और बाहर तो लोग बिना खाए मर रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा कि हम छोटा सा अपराध करें और जेल चले जाएं। मंत्री जी घबरा गए, बोले भैया फंसाओ मत, मैं नया नया मंत्री बना।
0: उससे एक हादसे तो जरूर पैदा हो गया। क्योंकि तो आपने बाहर से ज्यादा सुख सुविधाएं अंदर दे रखी हैं।
1: तो भाई आप छोटा सा क्राइम करके अंदर जाएंगे तो आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगे जो बाहर आपको उपलब्ध नहीं है।
0: तो इस बात का रोचक यही है कि सर, कि कहा भी जाता है, जो आपने एक वाक्य का यहाँ जिक्र किया, अक्सर हमने सुना भी है कि तोल मोल की बोलना चाहिए, कि क्योंकि जिस तरीके से कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, जबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, तो इस बात को अगर हम सब ध्यान रखेंगे कि तोल मोल कर बोलेंगे तो हमारी शब्दों की गरिमा बनी रहेगी, माहौल अच्छा बना रहेगा और पत्रकारिता की जो एक भूमिका है, या यूं कहें कि पत्रकार की जो एक भूमिका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके कंधों के ऊपर, सच्ची अच्छी बात रखे, अगर कोई बात कड़वी भी है तो बहुत सदे हुए शब्दों में रखे ताकि एक माहौल अच्छा बनकर रहे। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो बातों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान है अतुल शाह जी, जो कि पेशे से पत्रकार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम आपको मिलेंगे, यहीं कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल, मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम जो बात कर रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, जर्नलिज्म के बारे में बात हो रही है, और पहले के समय के बारे में बातें की, आज के समय के बारे में बातें की। पहले का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि 25 सालों का अनुभव है। हमारे जो खास मेहमान है, आप है अतुल शाह जी। 25 साल का जब अनुभव है, वाकई बहुत बड़ा अनुभव है। तो उस समय क्या माहौल था, आज के समय में क्या माहौल है, और हमें किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सर, जब किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि आपके साहबजादे शादा विश्वविद्यालय के बास्कॉम डिपार्टमेंट में यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बीइंग अ फादर, आप एक पिता होने के नाते उनको क्या शिक्षा देते हैं, किन किन बारीकियों को आप बताते हैं, समझाते हैं?
1: ये मेरे लिए बहुत गर्व का अवसर है कि मेरे पुत्र जहां अध्ययन कर रहे हैं, आज मुझे जो है साक्षात्कार देने का मौका मिला है। और उनकी रुचि थी पत्रकारिता में
0: जी,
1: है ना। मैं पत्रकार हूं, इसलिए मैंने उसके इस आने के लिए प्रेरित नहीं किया है, बल्कि वह स्वतः प्रेरित थे। उनकी मैं जब लिखने की शैली को देखता था तो मुझे लगता था कि उन्हें इस फील्ड में जाना चाहिए, जबकि आज अधिकांश अभिभावकों का होता है कि वो उनका बेटा डॉक्टर बने
0: जी,
1: इंजीनियर बने या किसी और भी तरह जाए। लेकिन हम आज दौर बदल चुका है, हम अपने बच्चों को अपना करियर चुनने की पूरी आजादी दे सकते हैं और हमें देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं अपने बच्चे से यही उम्मीद करूंगा कि वो एक अच्छा नागरिक बने। अगर वो अच्छा नागरिक बनता है तो सारी खूबियां, सारी विशेषताएं उसके अंदर स्वतः आ जाएंगी, और उसे अपने पैसे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। और सिर्फ पैसे के लिए अगर वो काम करना चाहेंगे तो उससे बेहतर है कि वो ना करें।
0: क्या बात है?
1: अगर हम समाज को कुछ दे सकते हैं तो यही हमारी उपलब्धि होगी। और मैं चाहता हूं कि मैं 25 साल के अनुभव को उनको जरूर जो है दूंगा कि वो जो है आगे बढ़ें और जरूर समाज को एक नई दिशा दें।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लिसनर्स, मैं समझता हूं कि यही संदेश जो अपने पुत्र को वो दे रहे हैं, हमारे खास मेहमान, हर एक बच्चे के लिए ये एक छोटा सा संदेश है सर की तरफ से, कि इन बातों को भी अगर आप अपने जीवन में ढाल लेंगे, अमल में लेकर आएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। और असल मायने में, क्योंकि जब हम दुनिया में आए हैं तो ये काम अच्छा करेंगे कि लोगों के दिलों में जगह बनाकर रखें, कुछ अच्छा करें समाज के लिए। तो अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, तो इन बातों को सीखिए, समझिए और अमल में लेकर आइए, जिन बातों का जिक्र सर ने यहां किया है। तो सर, यहां पर वक्त हो चुका है आपसे अनुमति ले लेने का, और ये जो चर्चा रही, बाकी बहुत अच्छी चर्चा रही, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला है आपसे। और बस यही कहूंगा कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आप ऐसे ही अपने ज्ञान से हम सबको यूं ही रोशन करते रहे।
1: धन्यवाद गगन जी, बहुत अच्छा लगा। और हमने पत्रकारिता में उस समय से आज तक का सफर तय किया है जब हमको किसी अपनी न्यूज को अपने सेंटर पे भेजने में 2 दिन लगते थे और समाचार 3 दिन बाद प्रकाशित होते थे। फिर भी उनकी उस समय अच्छी भूमिका होती थी क्योंकि कुछ अच्छा लेसन मिलता था। आज जल्दी जल्दी का दौर है, त्वरित का दौर है, और ब्रेकिंग न्यूज का दौर है, और उसी कारण बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही
0: हैं। क्या
1: तो हमें जल्दी के चक्कर में जो है फायदे के चक्कर में कायदा नहीं बिगाड़ना चाहिए, और समाज हित सर्वोपरि।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत। आपके साथ ये चर्चा बहुत अच्छी रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लिसनर्स इस चर्चा से लाभ जरूर उठाएंगे, और 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर कि ये विशेष

0: वार्ता आपको कैसी लगी। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वार्ता से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। खासकर हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, या इस फील्ड में भी नहीं है लेकिन इन बातों से तो जरूर आप सीख लेंगे ही कि जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। जाते जाते सर कोई एक गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, सुनना सुनाना चाहते हैं, तो एक गाना हम आपके पसंद का अपने लिसनर्स को जरूर सुनाना चाहेंगे।
1: मैं चाहूंगा कि अजीब दास्तां है ये।
0: क्या बात है, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। तो चलिए वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, अनुमति ले लेने का। ये चर्चा कैसी रही बताइएगा जरूर। तो सर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hey, suno, suno, suno! सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: गगन खोखरी फतेह।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: आज प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हार्ट हार्ट
4: हमारा यार सौदा सौदा
2: ओहो
1: दोनों डील कर
2: टाइट, टाइट वेरी टाइट।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
0: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
1: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे हमारे यहाँ कचरे तो काम वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे हैं?
1: चमन टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो सभी का काम है। अब्बा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पाती।

0: नहीं करना पाते।
1: हाँ हाँ, हमें जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
2: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
1: हो जाए।
3: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
2: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
1: हाँ, बाहर सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
4: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
5: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
4: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
5: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
4: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा।
2: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
5: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
4: बहुत अच्छे तरह, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
6: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दें तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
4: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
6: नहीं चौधरी, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
5: वाह, कचरा भी आएगा तुम्हारा काम। तो ये गया गीले कचरे में,
1: और मेरे पास है सूखा कचरा।
4: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह गड़बड़ी सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
5: हजारों साल तक सड़ते नहीं
7: और खतरनाक भी होते हैं,
4: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो
5: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाली दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुप कर दो।
6: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े।
4: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
7: वाह, बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
5: हाँ, आइडिया।
4: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
5: अब आप देखिए अब्बा, हमारी कचरा कला।
4: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
8: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
3: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ऑडियो क्रेडिट्स परफॉर्म्ड बाय बंजारे एंड सिमरन कौर, रिटन बाय बंजारे एंड सिमरन कौर, कंपोज्ड बाय बंजारे, म्यूजिक प्रोडक्शन बाय रॉनी। सो लेट्स एंजॉय इट ऑल योर सुरु शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

दाल और दलिया पोषण की भरमार मिले, लोहे की कड़ाही में भोजन पके, लोहे की कड़ाही में भोजन।

से जीवन सफल हमारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, सौ में चमके न्यारा वो, सौ में चमके न्यारा वो जो अपना फर्ज

0: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
1: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा, तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: आप सुन रहे कार्यक्रम CSI लाभ कई, और जैसा आप सभी जानते हैं कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो चुका है और जो हमारी आशा बहन जी हैं वो भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लोगों को जागरूक करने में घर घर जाती हैं और बहुत सी बातें वो बताती भी हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ में हैं आशा बहन जी, साधना जी। तो सबसे पहले तो बहन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप आशा हैं तो एक आशा के तौर पर क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं?
5: हमें टीकाकरण पर जाना पड़ता है। टीकाकरण में जो गर्भवती वगैरह मिलती हैं हमें उन्हें बुलाना पड़ता है, बच्चों को भी बुलाना पड़ता है, वो टीकाकरण करवाते हैं, नहीं आते हैं तो उन्हें बार बार ये समझाना पड़ता है।
4: अच्छा, जैसे कि आप घर घर जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ता होगा।
5: सर जैसे ये कह देते हैं कि जो है ना, क्या नाम है, हमारे बच्चों को तो बुखार आएगा, हम नहीं लगवाएंगे, उनके पापा ने मना कर दिया, या 6 महीने तक अपना दूध भी नहीं पिलाते, तो हम बताते हैं उन्हें कि अपना 6 महीने तक अपना दूध पिलाया करो। और जो है ना कि बच्चे को टीका लगता है तो ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि बच्चा आपका ठीक है, जब आपको बच्चे को टीका लगेगा तभी तो आपका बच्चा ठीक है, इसलिए हम कई कई बार उनके घर जाके बताते हैं, समझाते हैं।
4: तो जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, किसी का प्रसव होने वाला हो, आप हॉस्पिटल ले जाती हैं तो किस तरह से उसके बारे में थोड़ा बताइए।
5: पहले हम 3 महीने तक तो उनका 3rd महीने पर टीकाकरण करवाते हैं, फिर अगले महीने उनका 4 बार चेकअप करवाते हैं, 2 उनका टीका लगवाने के बाद उनका फिर हमें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो हमें ये पूछना पड़ता है उनसे कि सर क्या आप डिलीवरी कहाँ करवाएंगे सरकारी में, तो वो जब सरकारी के लिए तैयार होते हैं तो हम उन्हें सरकारी को पूरा चीज़ दिखाते हैं, आपको पूरा जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ है, घर डिलीवरी मत करना वरना घर में ये खतरे हो जाएंगे।
4: और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको खान पान की क्या बात बताती हैं?
5: हरीदार सब्जियाँ, दाल रोटी, यही सब सारा सामान बताते हैं सर।
4: और आखिर में जानना चाहेंगे स्वच्छता के बारे में, जैसे आप घर में क्या बताती हैं जाके लोगों को?
5: हाथ धो के खाना पीना, साफ सफाई के बारे में बताते हैं सर, और बच्चे को मतलब क्या नाम है, मच्छरदानी के अंदर सुलाया करो क्योंकि मच्छर काटने से बुखार हो जाता, यही चीज जानकारी वगैरह देते हैं।
4: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: शुरुआती 2 साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
5: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सुन रहे कार्यक्रम से ऐसे ही लाभ कही, और जैसा आप सभी जानते हैं कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो चुका है, और सरकार का बहुत जोर है कि सभी बच्चों का टीकाकरण हो और जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको भरपूर पोषण मिले। और हमारी जो ANM बहन जी हैं वो उनकी भी अहम भूमिका है इस कार्यक्रम में। तो आज हमारे साथ में हैं ANM बहन जी संगीमल जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ANM बहन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
7: जी नमस्ते।
6: और जैसा हम देखते हैं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं खून की कमी की समस्या अक्सर देखने को मिलती है, तो क्या वजह है और किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है?
7: देखिए, वजह तो यही है कि वो अपने आप को ध्यान नहीं दे रही हैं, या तो कुछ लोगों के पास सुविधा नहीं है और वो हमारे पास आती हैं तो हम उनको इंजेक्शन लगाते हैं, तो हम उन्हें आयरन कैल्शियम की टेबलेट देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल डाढ़ा CSC पे भेजते हैं या जिम्स हॉस्पिटल में भेजते हैं।
6: तो जिन महिलाओं में खून की कमी है, खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो किस तरह से उसको पूरा किया जा सकता है, क्या उनका खान पान होना चाहिए, तो आप बताती होंगी।
7: मैं बोलती हूँ कि अगर आपके पास सक्षम है खाने के लिए तो आप दूध खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जो हमने आयरन कैल्शियम की दवा दी है वो खाइए, पनीर खाइए। लेकिन जिनके पास नहीं है सुविधा, नहीं सक्षम है, तो वो तो साग सब्जी हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकती हैं, और हम अपनी दवा देते हैं आयरन कैल्शियम की। और हमारे CSC पे ब्लड चढ़ने के लिए भी एक आयरन सिरप आती है, वो चढ़ाया जाता है।
6: तो कहने का मतलब ये है कि अगर सक्षम नहीं है आप, अच्छा जैसे पौष्टिक आहार है जैसे आपने बताया, तो कहीं ना कहीं जो हरे पत्तेदार साग सब्जियां उसके जरिए भी जो खून की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे पहले अक्सर हमारे जो घरों में है ना, जो लोहे की कढ़ाई होती है तो उसमें खाना बनता था, तो उसका कुछ फर्क पड़ता है?
7: बिल्कुल, अभी भी हम यही बोलते हैं कि अगर आप पालक वालक साग कोई भी सब्जी बनाइए तो आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो आप उसी में बनाइए, क्योंकि उसका बहुत फायदा होता है, उससे आयरन बहुत तेज बढ़ती है।
6: एक और बात आपसे जानना

0: चाहूंगा कि मान लीजिए किसी गर्भवती महिला में खून की कमी है तो उसके बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा?
1: बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए कि बच्चा भी कमजोर होगा। जब वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाएगी तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं, उसे तो ऑपरेशन के वो आ जाएगा।
0: तो कहने का मतलब यही है कि खान पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और खासकर गर्भवती महिलाओं के सबके लिए कि आपको कुपोषण का शिकार ना हो, और जो खान पान होता है कहीं ना कहीं आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उस पर भी उसका बहुत असर होता है। तो ज़रूर एनएम बहन जी की बातों का आप ध्यान रखिएगा कि पोषण का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। अब बात करते हैं टीकाकरण की, तो टीकाकरण कितना ज़रूरी है हमें थोड़ा बताइए गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के बारे में और बच्चों के टीकाकरण के बारे में।
1: गर्भवती महिलाओं के लिए तो टीकाकरण इसलिए जरूरी है कि जैसे ही गर्भ का पता चले वैसे टीटी का पहला टीका लगना चाहिए, ताकि कोई ऐसा वो ना हो जाए कि उसे टिटनेस की कोई वो हो, उसको टिटनेस का वो होगा तो उससे बच्चे को फैलेगा। तो उसके लिए हम टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं 3rd महीने में, उसके 1 महीने बाद हम टिटनेस का दूसरा टीका लगाते हैं और उसके लिए दवा देते हैं हम, इसी के लिए होता है कि टिटनेस की बीमारी ना हो। और बच्चों के लिए तो सरकार बहुत सारे टीके जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में 5-5, 6-6 हज़ार के लग रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री सुविधा दे रहा है, तो बच्चे के लिए एक एक दवा इंजेक्शन जो है वो बहुत महत्व है उसके लिए।
0: बिल्कुल एएनएम बहन जी, हम भी रेडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो हमारे सुनने वाले हैं आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान जरूर रखें, और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे खास करके जो महिलाएं उनके लिए और बच्चों के लिए?
1: मैं तो यही कहूंगी कि भाई वो अपने को ध्यान दें, खाने पीने के लिए भी ध्यान दें, और अपने बच्चे को भी टाइमली आके टीके इंजेक्शन फ्री सुविधा मिल रही है तो लगवाएं।
0: बिल्कुल, तो जरूर सब इस तरफ ध्यान देंगे कि जो निशुल्क टीकाकरण होता है समय पर बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं, ताकि भविष्य में होने वाली बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सके और फिर आपको पछताना ना पड़े, और साथ ही साथ अपने पोषण का जरूर ध्यान रखें। एनएम बहन जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
4: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
5: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
6: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप तक जानकारियां पहुंचे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो चुका है। थीम भी रखी गई है कि हमारी आंगनबाड़ी हम सबकी जिम्मेदारी, और यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशा बहन जी ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि जन जन तक जानकारी पहुंचे, और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं उनको समय पर पोषण मिले, टीकाकरण का हो, बच्चों का टीकाकरण हो। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ में हैं दीपशिखा बहन जी, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं एचआर में, और इनसे हम बात करेंगे। तो बहन जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपका आंगनवाड़ी सेंटर है, क्या कुछ सेवाएं यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको दी जाती है?
9: गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराते हैं, उनकी फर्स्ट ANC कराते हैं, सेकंड, थर्ड, 4 जांचें होती हैं गर्भवती से पहले वो कराते हैं, 2 टीकाकरण कराते हैं, उनका हाइट वेट भी करते हैं और ब्लड की जांच भी करते हैं कि उनमें हीमोग्लोबिन कितना है, कि जिससे कि वो HRP ना हो। और उनको सही खाने की सलाह देते हैं कि उनको ताजी खाना खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए और मौसमी फल वगैरह सभी को खाने की उनको सलाह देते हैं हम जो है, और समय से टीकाकरण कराना चाहिए और पहले से अपनी डिलीवरी के टाइम की तैयारी करके रखनी चाहिए, अपने बच्चे के साफ कपड़े, अपना टीकाकरण, अपना 2-3 जो अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्ट होती है वो सारी अपनी रिपोर्ट तैयार रखनी चाहिए, जिससे कि हमें डिलीवरी के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। और डिलीवरी के बाद हमें जन्म लेते ही अपने बच्चे को पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए, जो हमारे बच्चे के लिए एक अमृत का काम करता है, और 24 घंटे के अंदर अपने बच्चे को हमें BCG का टीका लगवाना चाहिए।
8: तो ये तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। अब हम बात करना चाहेंगे आपसे, जो कुपोषित बच्चे होते हैं तो उनकी पहचान आप कैसे करती है?
9: कुपोषित बच्चों की हम पहचान, उनका पेट बड़ा होता है, आंखें धसी हुई होती है और हाथ पैर बहुत पतले होते हैं, और वो अपने समय के अनुसार ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसके चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है।
8: तो वो ठीक हो, पोषित हो जाए, उसके लिए क्या उनको सलाह देती हैं, क्या उनके लिए आहार मिलता है?
9: उनके लिए डबल राशन मिलता है हमारी तरफ से, और उनको हम आयरन सिरप देते हैं जो कि हफ्ते में 2 बार हमको पिलानी होती है। तो हम उनको डॉक्टर को जाने की सलाह देते हैं, और जहाँ तक कि अगर ज़्यादा कोई गंभीर समस्या होती है, ज़्यादा कुपोषित बच्चा होता है, उसको हम NRC में भी भर्ती कराने की सुविधा है यहाँ पर जो है।
8: तो ऐसे आपके आंगनवाड़ी सेंटर पर भी कोई ऐसे बच्चे थे जो कुपोषित थे, फिर आपने उनकी पोषण आहार की व्यवस्था करी तो वो ठीक हो गए हो?
9: हाँ, ऐसा हुआ था। यहाँ पे 2-3 बच्चे ऐसे थे जो कुपोषित थे, और हम उनको राशन दिया था और उनको खाने की सलाह दी थी, और उन्हें हॉस्पिटल में भी दिखाया था, तो वो बच्चे स्वस्थ हो गए थे।
8: अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो कहा यह जाता है कि अगर गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सही रहेगा तो कहीं ना कहीं जो पेट में पल रहा बच्चा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो उनके लिए आप क्या सलाह देती हैं, कैसे उनको खाना खाना चाहिए, खासकर जो गर्भवती महिलाएं और उसके बाद जो धात्री महिलाएं हैं?
9: धात्री महिलाओं को भी अपने समय से उनको 6 महीने तक आयरन कैल्शियम भी खाना चाहिए और अपने खाने के साथ साथ उनको अतिरिक्त खाना भी खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, मौसमी फल वगैरह सभी ऐसी इस तरह की चीजें लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी दिन में कम से कम 2-3 घंटे तो आराम करना चाहिए। शुरू शुरू में ज्यादा भारी काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा जीना नहीं चढ़ना चाहिए और अपने 3 महीने के बाद आयरन कैल्शियम खाना चाहिए और हमारे पूरे 9 महीने की गर्भ के दौरान 2 टीके लगते हैं, वो टीके लगवाने चाहिए।
8: अच्छा, आप घर घर विजिट करने भी जाती होंगी, तो महिलाओं को क्या सलाह देते हैं आप?
9: यही सलाह देते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का ही दूध पिलाएं, घर का बना हुआ खाना खिलाएं, जो आंगनवाड़ी से अब ये राशन मिलता है उसको ताजा ताजा बनाएं और बच्चों को खिलाएं।
8: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हम तक यानी कि रेडियो के माध्यम से हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं, खासकर हम उन्हीं को जागरूक करना चाहते हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं पोषण की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं या टीकाकरण के प्रति वो जागरूक नहीं है, अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाते, पोषण का ध्यान नहीं रखते, तो उन सब तक ये जानकारी पहुंचाई और कहीं ना कहीं वो जागरूक होंगे, फिर अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखेंगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत अब हमारे साथ में है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सविता जी, उनसे हम बात करेंगे। तो बहन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो नौवां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हुआ है, तो क्या कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर आई हैं?
1: ये इसमें हमारे ऊपर आता है कि हम घर घर जाके महिलाओं को, बच्चों को, मतलब जो उन बच्चों की माताएं होती हैं, उनको समझाना कि अपने बच्चे को तुम्हें मतलब ज्यादा गंदगी में नहीं रखना है, अपने आसपास साफ सफाई रखनी है और अपने बच्चे को खान पीन का मतलब पूरा पूरा ध्यान रखना है ताकि उनको ना पकड़े कोई बीमारी।
0: अच्छा, अक्सर देखा जाता है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चे भी होते हैं, अक्सर खून की कमी हो जाती है, तो क्या उनको आप सलाह देती हैं?
1: इसमें मतलब देखा जाता है कि जो ज्यादा कमजोर होते हैं, कहते हैं कि एनीमिया हुई है, तो उनको जो है अपने बच्चे को, एक तो आयरन सिरप बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ना दोनों चीजें होती हैं, बच्चे का खून भी बढ़ता है और बच्चे के अंदर कैल्शियम की भी कमी नहीं होती है। और माँ के लिए भी आयरन कैल्शियम बहुत जरूरी नहीं है कि वो गर्भावस्था के टाइम ही खाएं उसको, वो अपने वैसे टाइम पे भी खा सकती हैं, बच्चा 1 साल का है या 2 साल का है उसमें भी खा सकती हैं। और गुड़ चना खाना चाहिए माताओं को।
0: अच्छा, देखा जाता है अक्सर महिलाएं परिवार में सबका तो ध्यान रखती हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं, खासकर खान पान का, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
1: हाँ, उसमें कई बार हो जाता है ऐसे कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने काम में इतनी व्यस्त होती हैं कि खाने पीने का टाइम ही नहीं होता उनके पास। तो हम तो यही सलाह देते हैं कि देखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए। जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो परिवार का कैसे रखोगे, कैसे तुम अपने बच्चे को स्वस्थ और मतलब पौष्टिक रख सकते हो उसे।
0: जरूरी है कि जो महिलाएं पहले अपना ध्यान रखें और तभी जो आने वाली पीढ़ी है वो स्वस्थ रहेगी। एक और योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, कौन पात्र है, क्या इससे लाभ मिलता है?
1: बिल्कुल, इसमें हम कहते हैं कि जो पहली गर्भवती होती है, जिसका पहला बच्चा होता है, देखिए उसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए लाभ है। और जो दूसरा लाभ होता है वो दूसरी बेटी होनी चाहिए। और ये वाला जो मातृवंदना का जो फार्म है वो सिर्फ 9 महीने तक भर सकता है, उसके बाद हम उसे नहीं भरवा सकते, नहीं भरा जाएगा वो। तो ये सरकार हमें जो पैसा देती है उसमें सिर्फ माँ के लिए देती है कि जिससे माँ खाए अच्छे से और उनको पौष्टिकता मिले और ताकि बच्चे को वो स्वस्थ कर सके।
0: तो कोई भी अगर महिला जो मातृ वंदना योजना का लाभ लेना चाहती है तो क्या पात्रता, क्या क्या उनके लिए दस्तावेज की आवश्यकता होती है?
1: हाँ जी बिल्कुल, उसमें हम बताते हैं कि देखिए, अगर आपकी पहली गर्भावस्था है तो आपको ये PMVY वाला फॉर्म भरवाना बहुत जरूरी है। तो उसमें हम कहते हैं कि एक तो उनका आधार कार्ड लगता है और उसमें ही उनका एक ईश्रम कार्ड होता है और एक उनका बैंक अकाउंट वाला होता है और एक होता है उनका जिससे उनका टीका लगता है, TD वाला टीका हो या फिर बच्चे वाला हो, बच्चा भी जब तक 9 महीने तक होता है तब तक हम PMVY वाला फॉर्म भर सकते हैं।
0: तो ये तो हो रही कि किस तरह से जो महिला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ उठा सकती हैं। अब बात करते हैं, जैसे आपका आंगनवाड़ी सेंटर है तो क्या कुछ यहाँ पर महिलाओं के साथ स्वास्थ्य चर्चाओं की बैठक भी होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: जी हाँ, इसमें हम मतलब अपने यहाँ पे जैसे एक होता है स्तनपान कराना, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। महिलाओं की एक बैठक होती है, उसमें हम बिठा के यही सब समझाते हैं कि आपको अपने बच्चे को कैसे कैसे मतलब दूध पिलाना है और कैसे उनको स्वस्थ रखना है, किस किस कारणवश वो स्वस्थ रह सकते हैं, किस कारण बस वो अनस्वस्थ रह सकते हैं।
0: बहन जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और जरूर हमारे जो समुदाय के लोग हैं जागरूक होंगे। कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

इसीलिए तो कहता हूं, यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। बाकी

चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन।

0: Production, animation, VFX, gaming design, public relation and advertising.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे हर्बल पौधों की खेती के बारे में और साथ ही साथ आज के समय में जो सिंचाई करने की आधुनिक नई तकनीकी जो आई है उन तकनीकियों के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ लोक संगीत के माध्यम से यानी कि उपदेश रागनी के माध्यम से आपका मनोरंजन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्बल पौधों की खेती के बारे में। किसान मित्रों, अगर आप कम लागत में अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो परंपरागत खेती की जगह हर्बल पौधों की खेती कर सकते हैं। जड़ी बूटी और औषधीय पौधों को उगाना और उनकी देखभाल करना ही हर्बल खेती है। हर्बल पौधों में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इन पौधों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारे देश में कई औषधीय पौधे काफी मशहूर हैं जो आप भी जानते होंगे। इनमें अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गूलर का नाम प्रमुख है। किसान मित्रों, बदलते दौर में औषधीय पौधों के महत्व को तेजी से अपनाया जा रहा है। मांग बढ़ने के कारण किसानों के लिए भी इनकी खेती का अवसर तैयार हो गया है, इसीलिए किसान भाई हर्बल पौधों की खेती को अपनी कमाई का एक अच्छा जरिया बना सकते हैं। किसान मित्रों, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड वर्तमान में औषधीय पौधों के सतत विकास, प्रबंधन और संरक्षण में पूरे देश में काम कर रहा है। इसके तहत किसान मित्रों को कई तरह की सहायता दी जा रही है, जिसमें किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती करना, पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, आगे के संपर्कों के साथ फसल कटाई के बाद प्रबंधन इकाई की स्थापना करना, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना तैयार करना शामिल है। किसान मित्रों, एक आकलन के मुताबिक देश में हर्बल उत्पादों का बाजार करीब 50,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें सालाना हर्बल पौधों के लिए प्रति एकड़ बुआई का रकबा अभी भी इसके मुकाबले काफी कम है। हालांकि ये सालाना 10% की दर से बढ़ रहा है। किसान मित्रों, परंपरागत खेती की तुलना में हर्बल पौधों की खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ है, क्योंकि इन फसलों को परंपरागत फसलों की अपेक्षा कम खाद पानी और ज्यादा देखरेख की आवश्यकता नहीं पड़ती। औषधीय पौधों का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किया जाता है, जिसकी मांग देश की आयुर्वेदिक कंपनियों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी रहती है। तो किसान मित्रों, आप भी हर्बल पौधों की खेती करके कम लागत में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही हर्बल पौधों की खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं तरुण वाल्यान।

किसान मित्रों, अभी आप तरुण बाल्यान से ये देशभक्ति रागनी सुन रहे थे। किसान मित्रों, पानी हमारे जीवन के साथ साथ खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। कृषि में पानी का उपयोग व्यापक स्तर पर फसलों की बुआई से लेकर उसकी कटाई से पहले तक, सिंचाई, कीटनाशक छिड़काव और बीज तैयार करने में किया जाता है। लेकिन सिंचाई में सबसे अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी पौधों के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं के संचालन में आवश्यक है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। कृषि में लगभग 80% भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। अगर भूमिगत जल का इसी दर से दोहन होता रहा तो यह एक सूखे जैसी भयानक स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे हमारा जनजीवन और कृषि दोनों ही बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए सिंचाई की नई तकनीकियां ईजाद की गई हैं, जो पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाते हुए फसल की पैदावार भी बढ़ाती हैं, और इन तकनीकों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। तो किसान मित्रों, आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी नई तकनीकियों का उपयोग किया जा रहा है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं पूजा शर्मा।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पूजा शर्मा से ये देशभक्ति रागनी। और अब किसान मित्रों बात करते हैं कि आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी नई नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान मित्रों, आजकल कृषि में सिंचाई की नई तकनीकों में बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई विधि प्रमुख है। इनमें बूंद बूंद सिंचाई विधि प्रमुख रूप से बागवानी, सब्जियों और पंक्ति में बोई गई फसलों में अपनाई जा सकती है। इस विधि द्वारा किसान अपने खेत में पानी के उपयोग को बहुत हद तक कम करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि में पानी के उपयोग की दक्षता 90-95% तक मानी गई है और इस विधि द्वारा किसान भाई सतह और उपसतह दोनों तरीकों से फसल में सिंचाई कर सकते हैं। ये विधि पानी को पौधों की जड़ पर बूंद बूंद करके पानी उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार फव्वारा विधि में फसलों को कृत्रिम विधि के पानी के प्रयोग की दक्षता 80-85% तक मानी जाती है। ये विधि किसी भी प्रकार की फसलों में अपनाई जा सकती है, जैसे बागवानी, दलहन, तिलहन, अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का। किसान मित्रों, यहाँ पर एक खास बात आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों विधियां फसलों में लगने वाले कीटनाशक और घास नाशक को मारने वाली दवाइयों के प्रयोग को लगभग 30% तक कम कर देती हैं और फसलों की पैदावार को 20% तक बढ़ा देती हैं। तो आप भी कृषि में आधुनिक सिंचाई की जो नई विधियां हैं उनका उपयोग करें ताकि आपका समय भी बचे, आपका पैसा भी बचे और खेती में लागत कम आए और आपको फायदा ज्यादा हो। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। और देखिए, अब समय हो चला है कि आपसे अनुमति ली जाए। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर एक मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कुशीनगर जिले का एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो। और रेडियो प्रज्ञा पर आपकी दोस्त वो होस्ट नव्या आपके बीच मौजूद है कार्यक्रम हिंसा को नो लेकर। जी हाँ, आज हम अपने एक अलग एपिसोड के साथ फिर मुखातिब हो रहे हैं आपसे। अभी तक आपने हमारे जितनी भी एपिसोड सुने, जितनी भी कहानियाँ सुनी, उससे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि हिंसा आखिर है क्या और इन बढ़ती घरेलू हिंसा को कैसे रोका जाए। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये घरेलू हिंसा भी अलग अलग रूप में किया जाता है, कभी दहेज के लिए, कभी बच्चे के लिए, कभी किसी बात को लेकर। परंपराओं की आड़ में हो रहे हिंसा को रोकने का प्रयास भी बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें परंपरा का नाम दे देते हैं। और इन्हीं परंपराओं को तोड़ने के लिए स्मार्ट और रेडियो प्रज्ञा एक पहल कर रहा है, जिसमें आप सबसे ये कहा जाता है कि हिंसा सही नहीं, सुने समझे और चुप्पी तोड़े, तभी तो आप हिंसा को नो बोल पाएंगे। लेकिन आज की हमारी कहानी ये दर्शाती है कि अभी भी हम अपनी चुप्पी को तोड़ नहीं रहे हैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या हिंसा के खिलाफ आवाज उठेगी या आवाज दबेगी। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी की पात्र हैं रंभा प्रतिभा, जो कि रंभा की सौतन है, उसकी सास और रंभा का भाई। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी शादी को 10 साल हो गए थे, पर उसे कोई बच्चा नहीं था। कई बार डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार जब वो महिला कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई, तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी सास और ननद अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से करा देती है। जब रंभा ससुराल वापस आती है, तो सौतन को देखकर वो घबरा जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बहुत रोती है, लेकिन रोके भी क्या करती। धीरे धीरे इस सच्चाई को मानकर वो उसी घर में सौतन प्रतिभा के साथ रहने लगती है। घर की सारी जिम्मेदारी अब प्रतिभा को मिल चुकी थी और रंभा घर का सारा काम करती रहती है, बर्तन से चूल्हा चौका और भी सब कुछ। लेकिन रसोई घर में जाकर खाना बनाना या निकाल कर कुछ खा लेने का अधिकार नहीं था उसे। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सिर्फ रंभा और प्रतिभा थी, प्रतिभा भी किसी काम में बहुत व्यस्त थी। इधर रंभा का पूरा दिन काम में निकल गया था, उसने पूरे दिन में कुछ खाया नहीं था। जब रंभा को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने अपनी सौतन प्रतिभा से कुछ खाने को मांगा, लेकिन प्रतिभा रंभा की बातें सुनकर भी अनसुना कर देती। रंभा कुछ देर इंतजार करने के बाद किचन में जाती है और अपने लिए खाना निकाल कर लाती है। बस इतनी ही देर में प्रतिभा उसे देख लेती है और अपनी सास को बता देती है। उसकी सास रंभा को गाली देती है और कई सारे अपशब्दों का प्रयोग करती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही निकल जाता है और ये समय क्यों ही निकलता रहता है। रंभा के साथ उसके ससुराल की किसी व्यक्ति का व्यवहार सही नहीं था। उसकी एक छोटी सी भी गलती पर कई दिनों तक उसे खाना नहीं दिया जाता था। रंभा इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे कम दिखाई देने लगा था। और इधर प्रतिभा की शादी के कुछ महीने बाद वो गर्भवती हुई और उसे एक बच्चा हुआ। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब वो 5 साल का हो गया, तो उसकी माँ ने उसे ये सिखा दिया था कि रंभा को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो कोई गलती करे तो उसे डंडे से मारना। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, प्रतिभा का बेटा बिल्कुल वैसा ही करता था। रंभा को उसकी सास हर बात पर डंडे से हाथ पर मारती थी और रंभा चुपचाप सहती थी। यहाँ तक कि वो अपने मायके में भी कुछ नहीं कहती थी। एक वक्त आया जब रंभा बुरी तरह बीमार हो गई, ना उसे दिखाई देता ना वो चल पाती। महज उम्र थी 35 साल, लेकिन वो 35 साल की उम्र में ही 60 साल की बूढ़ी लगने लगी। आसपास के लोगों ने जब देखा कि अब रंभा मर जाएगी, तो उन्होंने कहीं से उसके भाई का नंबर ढूंढ निकाला और उसे फोन कर बुलाया। जब भाई आया, तो रंभा की सास ने झूठ बोल दिया कि वो हॉस्पिटल गई है। भाई दिन भर घर के बाहर पड़ा रहा। जब रात होने पर भी रंभा की कोई खबर नहीं मिली, तो वो जबरदस्ती घर के अंदर गया और वहाँ देखा कि उसकी बहन अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बिना देर के वो भाई अपनी बहन को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हॉस्पिटल आते आते रंभा की मृत्यु हो गई। और ये सब देखकर उसका भाई अंदर से टूट गया। वो ये सोच रहा था कि उसकी बहन ने उसे कभी भी कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसे इंसाफ चाहिए था। उसके भाई ने उस पर हुए हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और जांच पड़ताल के बाद रंभा के ससुराल के सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए, क्योंकि ये बात साफ हो गई थी ही रंभा के साथ हुए इस हादसे के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी फैमिली, अपने ससुराल वालों का ही हाथ है। घरेलू हिंसा करने के जुर्म में वो सभी जेल चले गए। बस इस बात की तकलीफ थी कि अगर रंभा ने पहले ही अपने साथ हो रहे हिंसा के खिलाफ एक्शन लिया होता, अपनी फैमिली को बताती या किसी की मदद लेती, तो आज वो जिंदा होती। ये कहें कि हमारे भारत में आए दिन इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती है जिसमें न जाने कितनी महिलाएं हिंसा को सहते हुए अपनी जान दे देती हैं, लेकिन फिर भी अपनी वो चुप्पी नहीं तोड़ती है। लेकिन आज हमें सुनने वाली उन महिलाओं से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जिनके साथ किसी भी तरह का हिंसा हो रहा हो, वो हिंसा की शिकार हो रही हो, तो आप डरे नहीं, आप आवाज उठाएं।
6: तो सुना आपने रंभा के साथ हुए हिंसा की कहानी। कहानी में आपने सुना कि रंभा निशंतान थी और उसकी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करा देती है, जिसके बाद प्रतिभा को घर की मालकिन बना दिया जाता है और रंभा एक नौकरानी की जिंदगी जीने लगती है। धीरे धीरे उसके खाने पीने में भी कमी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और कुछ दिनों में उसे दिखाई देना भी बंद हो जाता है और कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि बिस्तर से उठ पाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और जब इस बात की खबर आस पड़ोस के लोगों को लगती है तो वो कहीं से तो रंभा के भाई का नंबर ढूंढ निकालते हैं और उसे फोन करके बुला देते हैं। जब भाई आता है तो वो अपनी बहन की इस बुरी हालत को देख काफी चिंतित होता है, उसे हॉस्पिटल भी ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी बहन के साथ क्या हुआ था उसे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उसके ससुराल वालों के खिलाफ हिंसा की शिकायत दर्ज कराता है और उन्हें सजा दिलवाता है। लेकिन ये सिर्फ रंभा की कहानी नहीं है, ऐसी कहानियाँ हमारे समाज में बहुत सी महिलाओं की है जो ना तो अपनी तकलीफ किसी से कह पाती हैं और ना ही इसके खिलाफ आवाज उठा पाती हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हिंसा हो रही है सिर्फ वही आवाज उठाएगा। अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना है या हो रही है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। आप अपने समाज की बुराइयों को रोकने में सक्षम हैं और इसके लिए हमारी सरकार भी हमारी महिलाओं के साथ है। अगर कोई महिला कमजोर है और हिंसा जैसी बातों से बिल्कुल अनजान है तो आसपास के लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप उस महिला को इस बात से रूबरू कराएं कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो हिंसा है और उसे रोकने का उपाय भी जरूर बताएं। अगर वो सहमत है तो उसका साथ दें, ना कि देख के चुपचाप अपने घर में चले जाएं, क्योंकि पता है ना इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है। और बाकी आप सभी को जागरूक करना हमारा काम है। हमने अपने हर एपिसोड में आपको बताया है कि हिंसा क्या है और इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, इसी तरह अगर सारी महिलाएं एक साथ एकजुट होकर हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगी तो हिंसा हमारे समाज से जड़ से खत्म की जा सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सभी महिलाएं जागरूक बनें और एक दूसरे का साथ दें, तभी तो हिंसा को जड़ से उखाड़ फेंकने का हमारा यह मिशन पूरा हो पाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारी ये वाली कहानी आप सभी को समझ में जरूर आई होगी और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी का आप सभी लाभ भी उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। और हाँ, अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी घटना हुई है या हो रही है तो आप इसकी जानकारी हम तक भी पहुंचा सकती हैं। नंबर हमारा है 91-173-19-819। तो अब हिंसा को सहे नहीं, इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं और ये कहें कि सुनो समझो चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो।
5: आपके शहर में ही आपके लिए बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर हैं जहां आप कॉल करके अपने साथ हो रहे हिंसा की जानकारी दे सकती हैं और अपनी मदद के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल जरूर करें। दस नब्बे या 112 ये नंबर डायल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं या अपने क्षेत्र के महिला थाना या वन स्टॉप सेंटर या फिर महिला एवं बाल विकास अधिकारी से सहायता ले सकती हैं। इसके अलावा आप घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपने साथ हो रहे हिंसा की इस कहानी का अंत कर सकती हैं। अब ये आप डिसाइड करेंगी कि आप हिंसा का शिकार बनना चाहती हैं या बंद करना चाहती हैं। आपकी एक आवाज न जाने कितनी महिलाओं को जिंदगी देगा। तो पहले सुनिए, समझिए, फिर वक्त है चुप्पी तोड़ने का। तो चुप्पी तोड़िए और बोलिए हिंसा को नो। आज की इस कहानी से हमें उम्मीद है कि जैसा हमने सोचा था कि आप समझेंगी कि हिंसा क्या है और इसे कैसे रोकना है। और हम सब यही चाहते हैं कि आप हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं। हिंसा को नो का ये एपिसोड प्रसारित किया जा रहा है। फिलहाल ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और मिलेंगे आपसे नए स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक इंतजार हमारा।
4: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
7: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन। वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूंगा। कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर यह तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो
2: तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
3: अच्छा मैं कहती हूँ

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
4: 90.8 एफएम। अरे भैया रामू।
5: हाँ भैया श्यामू।
4: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
5: अरे भैया श्यामू हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
4: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6000 रुपए में हो रही है।
5: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
4: तो अभी चलो।
6: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
7: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac. कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नवजात शिशु के संपूर्ण विकास के लिए दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए ये आहार। जो अपने जन्मजात बच्चों का अच्छा विकास देखना चाहती हैं, उन्हें स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन आपके बच्चे को उचित मात्रा में सभी पोषण तत्व प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के पोषण तत्व की कमी से पीड़ित नहीं होने देता। स्वस्थ और पौष्टिक आहार केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि वो आपके स्तनपान की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने सामान्य आहार में उच्च प्रोटीन, कैल्शियम, पोषण तत्व और विटामिन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, साथ ही उन्हें तरल पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके सेवन से आपके बच्चे के विकास के लिए संपूर्ण पोषण तत्व प्रदान हो सकते हैं। दूध पिलाने वाली महिला को पीना चाहिए दूध। आपके आहार में कैल्शियम को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए दूध आवश्यक है। यह आपके बच्चे की हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी हड्डियों में उचित कैल्शियम बनाए रखता है। यह आपके बच्चे के शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को पीना चाहिए अधिक पानी। स्तनपान कराने वाली माताओं को कैफीन युक्त और अल्कोहल पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन स्तनपान के माध्यम से आपके शिशु के अंदर भी जा सकते हैं। कैफीन युक्त पेय के 3 कप से अधिक का सेवन करने से माताओं को नींद न आने की समस्या हो सकती है और आपके शिशु में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दूध पिलाने वाली माँ का भोजन बच्चे के जन्म

0: विकास में भी सहायता करता है। फोलिक एसिड पूरक के रूप में चिकित्सक द्वारा एक बार देने की सलाह दी जाती है। साबुत अनाज में मौजूद फोलिक एसिड इन पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं खाएं मछली। सैल्मन मछली DHA से समृद्ध होती हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उच्च मात्रा में पाई जाती है। यह आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कोहली आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस ऑडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में हम लोग आज क्लास 6 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है NCERT की, उसमें शामिल एक कहानी है नादान दोस्त, जो कि हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और लेखक प्रेमचंद की लिखी हुई है। प्रेमचंद सबसे बड़ा नाम माना जाता है हिंदी साहित्य में, भारतीय साहित्य में, और कहानी और उपन्यास में तो वो बेजोड़ है ही हैं। साथ ही उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी और कहानियों की संख्या जानकर आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि उन्होंने लगभग 300 के आसपास कहानियाँ लिखी, और उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि हम बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरी बात है कि उनका विषय उस समय ये नहीं था कि वो पाठ्य पुस्तकों में इस्तेमाल होंगी, लेकिन हम कुछ सामग्री ऐसी होती है जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जो कि बच्चों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है, नादान दोस्त। नादान दोस्त इसमें दो शब्द हैं और दोनों ही आपको एहसास होगा कि नादान जब हम कह रहे हैं तो थोड़ा एक अनजाना भाव, एक नादानी, एक थोड़ा सा ना समझपन है, और दोस्त जब कह रहे हैं तो लेकिन इसके बावजूद भी वो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं। इसलिए नादान दोस्त इस कहानी का जो मूल विषय है कि हम किसी की सहायता करना चाहते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कई बार कि वो कैसे करनी है, तो उसमें वो नादानी हो जाती है और हम भला करने के चक्कर में कुछ उल्टा कर बैठते हैं। खास तौर से अगर वो बच्चों के संदर्भ में बात हो तो बच्चों को एक लगातार कहना चाहिए, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। बच्चे स्वभाव से बहुत प्यारे हैं, वो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन शायद थोड़ा सा वो उल्टा हो जाता है। इसमें भी कुछ ऐसे ही है कि दो बच्चे हैं, वो चिड़िया ने बच्चे दिए हुए हैं और वो अंडे दिए हुए हैं, वो उनकी रक्षा करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन वो सारी कथा उल्टी हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि हम इस कहानी का आनंद लें और कहानी से जो भी बात आगे बढ़ेगी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर दोस्तों कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि कहानी की शुरुआत देखिए कि आप थोड़ी सी देर में ही लगेगा कि कहानी की एक खूबी ये कही जाती है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये सब इसमें भी वही भाव है। और बच्चों में एक बहुत बड़ा स्वभाव होता है, बहुत बड़ी स्वाभाविक वृत्ति होती है, और वो है कि वो जानना चाहते हैं कि क्या है इसमें, क्या है ये, कैसे होता है। सवाल बहुत करते हैं बच्चे और उन सवालों के द्वारा ही वो कहना चाहिए वो सीखते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि वो सवाल बहुत हैं। कहानी का आरंभ है कि केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। इसमें एक शब्द हमारे लिए थोड़ा सा जानने वाला है यहाँ, और वो है कि बाकी तो हम जानते हैं, चिड़ा है, चिड़ी है, उसको हम जानते हैं। दरअसल क्या है, कार्निस हम जो दीवार घर के बाहर, दरवाजे के आसपास या कहीं पे भी एक छज्जा जैसा निकाल दिया जाता है, हम उसको कार्निस बोलते हैं। और उस छज्जे के ऊपर ही चिड़िया ने अंडे दिए थे और ये दोनों बच्चे जो कि भाई बहन हैं वो उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको देखने में बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। उन दोनों के दिल में बहुत सारे सवाल उठते, और सवाल कितने थे देखिएगा उसकी एक झलक, कि उन स्वाभाविक इच्छा है कि हम जानना चाहते हैं, वो बच्चे जानना चाहते हैं, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, इतने सारे सवाल हैं इसी एक पैराग्राफ में। आपको 7-8 सवाल बच्चे जानना चाहते हैं, सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम जानना चाहते हैं, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। स्वाभाविक है जब हम बच्चों को या बड़ों को किसी को भी कोई सवाल का उत्तर नहीं मिलता तो फिर वो आपस में ही बातचीत करके बच्चे कैसे होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, अंडे कैसे हैं। ये दोनों बच्चे केशव और उसकी बहन श्यामा आपस में बातचीत करते हैं और श्यामा पूछती है, कहती है, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा फिर पूछती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब नहीं दे सकता था। पेचीदा मतलब थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा जटिल है, उलझा हुआ सवाल है, इसलिए वो शांत रहता है, चुप रहता है, उसका जवाब नहीं दे पाता। और इस तरह 3-4 दिन गुजर जाते हैं, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती रहती है और वो अधीर होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। और फिर एक दिन 3-4 दिन के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे और उनके सामने एक सवाल पैदा हुआ, अगर बच्चे निकल आए तो वो खाएंगे क्या, अर्थात उनका चारा क्या होगा, और चिड़िया तो इतनी छोटी सी है, वो बेचारी इतने बच्चों के लिए कहाँ से दाना लाएगी, कहाँ से भोजन लाएगी, गरीब बच्चे भूख के मारे बेचारे कहीं चू चू करके मर न जाए। और इस मुसीबत का अंदाजा लगाकर दोनों बच्चे घबरा उठते हैं और फैसला करते हैं कि इस छज्जे पे, कार्निस पे थोड़ा सा दाना रख दिया जाए और इससे होगा क्या। श्यामा कहती भी है, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना होगा, क्यों तब क्यों जाएगी चिड़िया कहीं, क्यों भैया बच्चों को धूप तो न लगेगी। श्यामा फिर पूछती है कि चारे का तो इंतजाम हो गया, भोजन का तो, कहीं ऐसा नहीं फिर उनको धूप लगे। केशव कहता, रे इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वह बोला, हाँ तकलीफ तो होगी, जरूर तकलीफ होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। और फिर वो दोनों निर्णय लेते हैं, आखिर फैसला लेते हैं कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और उनके पास थोड़े से चावल और पानी भी रख देना चाहिए ताकि वो आराम से भोजन पानी कर सकें। तो फिर लग जाते हैं दोनों बच्चे इस काम में और क्या करते हैं, श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से थोड़े से चावल निकाल लाई और फिर केशव ने जो एक कटोरी थी जिसमें तेल था उसको नीचे गिरा दिया और उसको अच्छे से साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से, चांदनी मतलब ऊपर जिससे छांव करनी है, वो कपड़ा कहां से आए। और फिर सोचते हैं, अगर कपड़ा आ भी गया तो उस कपड़े को वो टिकेगा कैसे, उसको सहारा चाहिए कुछ ना कुछ, अर्थात उसके लिए उसको कुछ छड़ियां लगानी होंगी तो वो कैसे लगाएंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहता है, उधेड़ बुन यानी कुछ कभी सोचता है कभी कुछ सोचता है, और आखिर में वो उसका भी हल निकाल लेता है और श्यामा से कहता है, जाकर कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है ना उसको उठा ला और उसको, और ध्यान रखना कि अम्मा जी को इसका पता ना चले। वो श्यामा कहती है फिर, लेकिन वो टोकरी तो फटी हुई है बीच में से, उसमें से धूप आएगी। तो कहता, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो बड़ा है तो वो झुंझला कर कहता है, तू पहले टोकरी तो ले के आ, उसका जो सुराग है उसका रास्ता मैं बंद करने का, उसका सुराग बंद करने का कोई ना कोई मैं रास्ता निकालता हूँ। श्यामा टोकरी ले आती है और उसमें जो सुराग था उसमें कागज ठूस दिया जाता है और इस तरह से वो एक टहनी के सहारे उस टोकरी को अड़ाकर दिखाता है कि देखो हम इसको ऐसे रखेंगे जिससे कि धूप नहीं आएगी और धूप से बच जाएंगे। और ऐसे में जब वो सोचती, वाह भैया कितने चालाक हैं, भैया कितने चालाक मतलब कितने होशियार हैं यहाँ पे। और देखिएगा इस कहानी में बच्चों, आपने देखा होगा बातचीत में भी, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता भी लें, उसके साथ साथ पढ़े भी इसको, तो देखेंगे इसमें सवाल ही सवाल है। कहानी सवालों के माध्यम से ही आगे बढ़ रही है कि ये कैसे होगा, कहाँ से आएगा, कौन लाएगा, और इस तरह से वो एक दिन वहां पे समाप्त होता है और एक अंश कहानी का कहिए कि यहाँ पे रुकता है। और फिर मौसम कैसा था, ये गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे और अम्मा जी ने दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई। लेकिन आज बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी, क्यों? क्योंकि उनका मन तो बाहर छज्जे पे लगा हुआ था। अम्मा जी को कहना चाहिए कि बहलाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, एक तरह से दोनों चुपचाप दम रोक के आंख बंद किए हुए मौके का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही अम्मा जी सोएंगी वो अपना दरवाजे की जो सिटकनी है वो खोली और बाहर निकल आए, और अंडों की हिफाजत के लिए एक तरह से पूरी तैयारी होने लगी। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया लेकिन उससे काम नहीं चला, शायद थोड़ा नीचे रह गया, तो वो नहाने की जो चौकी होती है बाथरूम के लिए, हमारे स्नान के लिए, वो भी उठा लाया और उस चौकी को नीचे रख के स्टूल उसके ऊपर रख दिया और फिर डरते डरते उस पर चढ़ गया। श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ लिया। इसमें जो स्टूल लाए थे उसकी जो चार टांग होती हैं वो थोड़ी सी इक्वल नहीं थी, बराबर नहीं थी, इससे वो हिल रहा था और जैसे ही हिलता था तो केशव को गिरने का खतरा होता था, उसको बड़ी तकलीफ होती थी और फिर वो उसको डांटता था चुपके से, मतलब दबी आवाज में डांटता था, क्योंकि वो छोटी है, कहता ठीक से पकड़ो इसको वरना उतर कर बहुत मारूंगा। और बेचारी श्यामा, थोड़ा सा उसका ध्यान बार बार ऊपर लगा हुआ है छज्जे पे, क्यों? क्योंकि वो भी देखना चाहती है कि वो अंडे कैसे हैं, क्या है ऊपर। और जैसे ही केशव ने कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई और केशव ने देखा कि वहां थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पे तीन अंडे रखे हुए हैं। लेकिन ये उस तरह का घोंसला नहीं था जैसा कि सामान्य तो होता है, और वो घोंसला थोड़ा अलग लगा उसको। तभी श्यामा नीचे से पूछती है कि भैया कितने बच्चे हैं, कितने अंडे हैं? केशव कहता है कि तीन अंडे हैं लेकिन अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तभी वो श्यामा भी कहती है, भैया मुझे भी दिखा दो, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। पहले कहता हाँ हाँ दिखा दूंगा, पहले जा थोड़े से जो चीथड़े हैं वो ले आ ताकि मैं इसके नीचे बिछा दूं और ये आराम से फिर वो रखे रहें। श्यामा दौड़ कर जाती है और अपनी जो पुरानी धोती है उसका एक टुकड़ा ले आती है और उसको वो गद्दी की तरह तह करके वहां पे बिछा देता है। और एक बार श्यामा फिर कहती है कि भैया मुझे भी दिखाओ कैसे हैं। फिर कहता नहीं नहीं पहले तुम टोकरी दो, टोकरी भी दे देती है, उसके ऊपर छाया कर देते हैं वो लोग, और फिर जो पानी की कटोरी है और चावल के दाने हैं वो प्याली भी वहां रख देते हैं दोनों। और फिर वो कहता है कि पहले मैं इसको कर दूं फिर मैं नीचे उतर आता हूं फिर तुमको दिखाऊंगा। सब कुछ कर देते हैं वो और वो धीरे से उतर आता है। अब श्यामा कहती है, गिड़गिड़ाती है एक तरह से कि भैया भैया मुझे भी दिखाओ, हमें भी देखना है। तो वो कहता कि नहीं नहीं नहीं भाई, अब तुम गिर जाओगी और तुमको चोट लग जाएगी। नहीं, वो कहती नहीं मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। लेकिन केशव उसको नहीं दिखाता और उसको ऊपर चढ़ाता नहीं, बार बार वो कहता नहीं तू गिर पड़ेगी तो अम्मा मेरी चटनी बना देगी, अर्थात अम्मा मुझे बहुत मारेगी, कहेगी कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा मुझे दिखा दो। तो कह रहे क्या करेगी तू देख के, अरे क्योंकि वो बड़ा है, थोड़ा सा बड़े वाली भाव है कि वो बहन सारी सहायता करती है लेकिन फिर भी वो बड़ा है तो वो उसको नहीं दिखाता। इसी बीच चिड़िया बार बार वहां आती हैं जाती हैं लेकिन वो बार बार उड़ जाती है वहां से। और श्यामा फिर उसको थोड़ी सी शिकायत करती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, तो मैं अम्मा जी से कहूंगी, आपकी शिकायत लगाऊंगी एक तरह से। तो केशव उसको डांटता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। तो वो श्यामा कहती है कि तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, और गिर पड़ती तो चार सर ने हो जाते। ये चार सर होना, देखिएगा एक हम बड़ा रचनाकार या कहानीकार कोई भी होता है उसमें भाषा में जो एक रवानगी और ताजगी आती है उसमें बीच बीच में मुहावरे भी इस्तेमाल करता है। चार सर होना ये मुहावरे की तरह होता है कि गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी, तो उसी तरह का भाव है इसमें। लेकिन वो श्यामा कहती है हो जाते तो हो जाते, कम से कम देख तो लेती मैं। तो तभी अचानक दरवाजा खुलता है और माँ बाहर आती है। फिर कहती है, अरे तुम दोनों बाहर कब आ गए? मैंने कहा था ना कि दोपहर में बाहर नहीं निकला। लेकिन दरवाजा किसने खोला? अब सवाल ये था कि श्यामा चाहती तो उसको बता देती कि केशव ने खोला, लेकिन श्यामा चुप रहती है क्योंकि उसे पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्यामा कि मैं बता दूं और केशव पिट जाए, तो भैया पिट जाए। इस चक्कर में वो चुप रहती है। या दो कारण थे, एक तो भैया की पिटाई का और दूसरा कारण ये था कि कहीं श्यामा को ये लग रहा था, एक तो प्रेम था भाई के प्रति और दूसरा ये था कि इस कसूर में इस कहना चाहिए जो गर्मी के में बाहर जाके उन सारी जो कार्यक्रम किया उन्होंने, इसमें वो भी बराबर की ही कसूरवार थी, वो भी बराबर की ही दोषी थी। इसलिए वो चुप रहती है और वो दरवाजा बंद करके सो जाते हैं आराम से। दोपहर में माँ उसको हवा करती है और वो आराम से सो जाते हैं। फिर अचानक 4 बजे जब उनकी नींद खुलती है तो श्यामा दौड़कर बाहर कार्निश के पास जाती है और देखती है कि अरे ये क्या, टोकरी का कहीं पता नहीं है। और वापिस जाती है तो देखती है कि अंडे तो नीचे पड़े हैं और शायद बच्चे उड़ गए हैं। श्यामा को यही लगता है, वो उल्टे पांव दौड़ती है, यानी कि तुरंत वापिस आती है और भैया को जगाती है और कहती है, भैया भैया उठो, बाहर देखो कि बच्चे तो उड़ गए, अंडे नीचे पड़े हुए हैं। और बाहर आके केशव देखता है तो वो तो सचमुच अंडे टूटे हुए नीचे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने जैसी चीज है वो बाहर निकली हुई है। और उसके साथ साथ जो पानी की कटोरी और चावल की कटोरी है वो भी टूटी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, चेहरे का रंग उड़ना मतलब वो डर जाता है और आंखों से अपना सहमी हुई आंखों से डर के मारे नीचे देखता है। श्यामा पूछती है, क्या भैया बच्चे उड़ गए क्या? तो थोड़ा उदास होके करुण स्वर में वो कहता है, अरे नहीं, अंडे तो टूट गए। बच्चे कहाँ गए? श्यामा फिर पूछती है, गए तेरे सर में, देखती नहीं अंडों से जो उजला उजला पानी निकल आया है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बनता, अर्थात जब वो अंडे टूट गए उसमें से जो सफेद सफेद है पानी निकला है वही उसकी तरफ बता रहा है कि इन्हीं से बच्चे बनते। और तभी देखता है कि माँ हाथ में एक सोटी लिए हुए आती है कि तुम दोनों फिर बाहर धूप में क्या कर रहे हो? और श्यामा कहती है, अम्मा चिड़िया के अंडे टूट गए। अम्मा देखती है और उनको डांटती है कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा इसीलिए वो टूट गए, जोर से डांटती है उनको। अब श्यामा को भैया पे कोई तरस नहीं आता, वो भी सारी कहानी उसको बता देती है कि शायद भैया ने उसको अंडों को ठीक से नहीं रखा होगा और वो इससे गिर गए और इसी से वो टूट गए। लेकिन वो कहती है कि अम्मा अम्मा भैया ने अंडों को छेड़ा था और केशव बेचारा डरा हुआ भीगी बिल्ली बन के चुपचाप बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है वहाँ पे। और माँ फिर पूछती है, आखिर तू गया कैसे वहाँ पे, पहुँचा कैसे वहाँ तक? कि फिर श्यामा बताती है कि इन्होंने हम लोगों ने चौकी स्टूल पे रखी। और केशव भी कहता है कि मैं तो चौकी लेकिन जो स्टूल है वो तुमने ही पकड़ा हुआ था। फिर माँ आखिर में सारी बात को समझते हुए कहती है कि तू, केशव को कहती है, तू इतना बड़ा हो गया तुझे अभी भी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। अर्थात किसी भी पक्षी के अगर हम अंडों को हाथ से छू देते हैं तो वो उसकी गंध को पहचान के, यानी कि वो अंडे एक तरह से खराब हो जाते हैं और वो चिड़िया फिर उसके ऊपर नहीं बैठती और वो एक तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फिर अंडे चिड़िया उनको दोबारा से नहीं सहती, उनके ऊपर नहीं बैठती। और इसीलिए चिड़िया ने वो अंडे नीचे गिरा दिए, माँ कहती है। और क्या करती वो चिड़िया? और इसका पाप किसके सर चढ़ेगा? इसका पाप चढ़ेगा केशव के सर। हाय हाय, तुमने 3 जाने ले ली, दुष्ट तुमने। माँ एक तरह से केशव को डांटती है, केशव रोनी सूरत बनाकर कहता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। माँ फिर सोचती है कि शायद बात ये भी कुछ और करना चाहते थे, कुछ और हो गया। और फिर वो हंसती है, लेकिन इस बात का केशव को कई दिन तक पछतावा रहता है, पश्चाताप रहता है। और बात क्या हुई कि अंडों की हिफाजत करने के जोग में, अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में अंडों को सहज कर रखने के कारण, इच्छा के कारण उनका सत्यानाश हो गया। वो उनका सत्यानाश कर डाला और केशव को इस बात का बड़ा पश्चाताप होता है। वो उनको बार बार, कभी कभी तो वो रो भी पड़ता है। और फिर उसके बाद चिड़िया कभी दिखाई नहीं दी वहां, दोनों की दोनों चिड़िया वहां से दोबारा कभी नहीं आई। मित्रों, कहानी बहुत सहज है, कहानी बहुत प्यारी है, कहानी हमारी जिज्ञासा से जुड़ती है, कहानी में बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, बच्चे हर बात को जानना चाहते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा, और वो लेकिन बड़ों के पास कई बार उन सवालों का जवाब देने की फुर्सत नहीं होती। जैसे अगर इसी कहानी को हम देखें, अगर हम पहले माँ या पिताजी में से दोनों में से कोई ये बात बता देता कि ये अंडों को हमें नहीं छूना है, तो शायद ये दुर्घटना नहीं घटती। लेकिन बच्चों की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो हर बात का कारण जानना चाहते हैं और हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उनमें बाल सुलभ जिज्ञासा होती है और इस जिज्ञासा को पूरा करने के कारण ही कई बार उनसे बाल सुलभ गलतियां भी होती है। और इस कहानी में ही एक और चीज ध्यान देने वाली है, और वो क्या है? वो ये है कि भाई बहन का आपसी रिश्ता भी देखने वाला है। केशव बड़ा है, वो बहन से सारे काम तो कराता लेकिन उसको अंडे देखने नहीं देता। इसी प्रकार वो सारे एक तरह से उसको डांटता भी है और बीच बीच में आप उसकी झलक पाते हैं। और जैसा मैंने कहा था, इस कहानी में आप कुछ मुहावरे भी देखेंगे, जैसे कि चार सर न हो जाते, चेहरे का रंग उड़ गया, भीगी बिल्ली बन गया। ये बहुत सारे, आप इसको जब कहानी को दोबारा सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा। और मैं फिर एक बार आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि बच्चे वास्तव में दोस्त की भूमिका निभाना चाहते थे, वो चिड़िया और उसके अंडों की सहायता करना चाहते थे, लेकिन नादानी में वो गलती कर बैठे और वो अंडे नष्ट हो गए। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी शायद नादान दोस्त है। अब आपके लिए मित्रों बहुत सारे आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे और आने ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये कहानी सवालों से भरी हुई है। आप इस कहानी को दोबारा पढ़ेंगे तो कई बार केवल जवाब की तलाश मत करिए, सवालों को भी देखिए। मैंने इस कहानी को जब आज पढ़ा फिर से आपके लिए दोबारा, तो मुझे इतनी लंबी सूची मिली सवालों की, मुझे तो मज़ा ही आ गया। आप भी ढेर सारे सवाल बनाइए, इसमें कम से कम 30-40 सवाल हैं, एक एक पैराग्राफ में 8-8, 10-10 सवाल हैं। आप उत्तर नहीं, केवल सवाल बनाइए, फिर उत्तर उनके अपने आप आएंगे। जैसे अगर हम इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास हैं वो भी देखेंगे, तो अगर आपने कहानी का आनंद लिया, कहानी को अच्छे से समझा, कहानी को समझा, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, जैसे कि शुरू में ही उसके बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अंडे कैसे होंगे, पहला सवाल ऐसा ही है प्रश्न अभ्यास में। और दूसरा सवाल क्या है? केशव ने और श्यामा ने वो टोकरी, पानी, चीथड़े क्यों रखे? वो भी उनकी सहायता के लिए। और एक सवाल ये भी कि भाई अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उनसे दोस्ती निभाई या उनसे नादानी हो गई। ये बहुत सारे सवाल आपको इस कहानी में दिखाई देंगे। और आप नए सवालों की सूची बनाइए, आप उससे भाषा सीखेंगे, सवाल बनाना सीखेंगे, उत्तर खोजना सीखेंगे। और साथ ही साथ आप चाहें तो एक नई कहानी भी बना सकते हैं कि अगर इस कहानी में नया मोड़ दे सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए अंडे नहीं गिरते तो फिर उसके आगे कहानी कैसे चलती। आप बहुत सारे सवाल इसमें हो सकते हैं। आप कल्पना करके देखिए, जो कि अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न अभ्यास में भी दिया हुआ है, कि ये गर्मी के दिन थे, सर्दी के दिन होते तो कैसा होता। और बहुत सारे इसमें कहना चाहिए व्याकरण से जुड़े हुए भी सवाल हैं। मित्रों, व्याकरण हम बार बार कह रहे हैं कि संदर्भ के साथ, पाठ के साथ उसको मिलाकर देखें तो आपको आसानी से समझ में आएगी। जैसे अगर आप इसमें संज्ञा और विशेषण देख रहे हैं, विशेषण ही देख लीजिए, बच्चे कैसे तगड़े, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, सब्जी कैसी है, मसालेदार है, अर्थात आप एक बार उन चीजों को ध्यान से देखेंगे कि जो किसी की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, वो संज्ञा हो स्वरनाम हो, और क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है। आप इस पाठ को धीरे धीरे पढ़िए, अभ्यास को थोड़ा सा देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, आप इसका आनंद ले पाएंगे। हम भी चाहते हैं कि कहानी है तो कहानी का आनंद ले। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
3: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दोस्तों, सलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

अभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान, उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पर्सनली बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
2: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
1: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
2: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
1: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
2: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
1: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी ये जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित विज्ञान धारावाहिक धरती की कड़ी। कौन करता काम? श्रोताओं, हवाओं और पानी का चक्र जीवन को अपने विभिन्न रूपों में बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। कैसे हवा अपना काम करती है और महासागर अपना, कैसे धरती में ऊष्मा का संचरण होता है, क्या धरती वाकई में चुंबक है, इन्हीं सब विषयों में उलझे मानव के सवालों का जवाब देगी हमारी आज की कड़ी। शीर्षक है

0: मानव मानव
1: जी भैया,
0: मानव जरा पानी देना।
1: अभी लाया भैया।
2: सृष्टि, पापा विनोद अंकल को लेकर कब तक आने को कह गए हैं?
3: 8 बजे की ट्रेन थी, 9 बजे तक आ जाना चाहिए। अब ये विनोद अंकल कौन है? अरे विनोद अंकल पापा के बचपन के दोस्त हैं। आज रात को कोई लेक्चर देने विदेश जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली आ रहे हैं और रात की फ्लाइट से जाएंगे। पर वो विदेश में क्यों लेक्चर देंगे?
2: अरे मानव, हमारे विनोद अंकल राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्था गोवा में वैज्ञानिक हैं और आजकल महासागरों के बढ़ते तापमान का धरती पर क्या प्रभाव है इस पर काम कर रहे हैं।
3: तो फिर वो बाहर क्यों जा रहे हैं?
2: अरे भाई, अपने काम को पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों से बांटने जा रहे हैं। कुछ उन्हें बताएंगे और कुछ उनसे जानेंगे।
3: अच्छा,
2: एक मिनट मानव, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तू लाए नहीं अभी तक।
3: वो मैं तो भूल ही गया भैया, अभी अभी अभी लेके आया। भूल गया क्या भैया? ये मानव घर का कुछ भी काम नहीं करता।
1: ठीक कहा सृष्टि, इसे कब से कह रही हूँ, जरा दुकान से जाकर चीनी लेकर आ, मेहमान आ रहे हैं। पर ये है कि टालता ही जा रहा है। ले विवेक पानी
2: लाओ। पर मम्मी ये बात बहुत गलत है, मैंने मानव को पानी लाने को कहा था, आप क्यों ले आई? आप ही इसे बिगाड़ रहे हो, घर का कोई काम नहीं करता ये।
1: अरे कोई आया है।
3: अरे लगता है पापा आ गए।
1: हाँ देखो बेटा,
2: मम्मी एक काम नहीं करता।
4: अरे आंटी आप,
3: अरे छोड़ दो।
4: मम्मी मल्होत्रा आंटी आई है।
3: ओ अरे भाभी जी आई आई है।
5: वसुधा थोड़ी चीनी चाहिए थी।
1: लो आप बैठिए ना। मैं विवेक, ए विवेक बेटा जरा जाके चीनी तो लेकर आना फटाफट।
5: ओए वसुधा घर में नहीं है, तुम रहने दो, मुझे तो बस थोड़ी सी चाय के लिए चाहिए थी। ठीक है, मैं मिसेस गुप्ता के यहाँ से ले लेती हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये सामने है तो दुकान है, विवेक जाएगा फट से ले आएगा। चलो विवेक चलो। अब
2: जा रहा हूँ ना मम्मी।
3: हाँ हाँ विवेक भैया ले आएंगे, पर ये मानव नहीं लाएगा, कुछ काम नहीं करता ये।
5: ओए अभी बच्चा है पुत्र, बड़ा होके तो काम करना ही है ना।
3: नहीं आंटी, ये तो घर पर पानी भी खुद नहीं लेता, बड़ा होगा तो सभी को परेशान करेगा, काम की आदत तो बचपन से ही होनी चाहिए।
5: ओए ये बात भी ठीक कही पुत्र, और वैसे भी घर के छोटे मोटे काम तो सभी को करने चाहिए।
1: ठीक ही कहा आपने मिसेस मल्होत्रा, पर मानव है कि सुनता ही तो नहीं।
3: पर ये मानव अब गया कहाँ?
6: मैं यहाँ हूँ दीदी, आपकी बातें सुन रहा हूँ।
1: अरे सुन रहा है या कुछ सीख भी रहा है?
2: मम्मी हाँ ये लो चीनी।
1: ला बेटा।
5: वसुधा तुम्हारे घर कोई आ रहा है क्या?
1: हाँ इनके दोस्त है ना विनोद जी, वो आ रहे हैं, वैज्ञानिक हैं वो। लीजिए मिसेस मल्होत्रा, ये लीजिए एक कटोरी चीनी। अरे शायद आ भी गए, देखती हूँ।
7: नमस्ते भाई साहब, आइए आइए
8: आइए ना। नमस्ते भाभी।
9: नमस्कार।
10: सूर्य प्रकाश भाई, ये तो विवेक है।
11: हाँ ये बड़ा वाला है। हाँ,
10: और ये सृष्टि है,
11: ये विवेक है,
10: और ये छुटकू सा मानव है।
11: विनोद तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। और ये हमारी पड़ोसन मिसेस मल्होत्रा है।
5: भाई नमस्ते जी।
10: जी नमस्ते।
5: बस चीनी लेने आई थी, चलती
1: हूँ। अरे मिसेस मल्होत्रा बैठिए ना, चाय बस तैयार है।
10: हाँ वसुधा भाभी, चाय की सच में जरूरत है।
11: सही बात है, बहुत थक गया।
1: मानव जरा पापा और अंकल को पानी तो दे दो।
3: अरे मम्मी मानव कहाँ लाएगा, मैं लाती हूँ।
10: अरे मानव जाओ ना बेटे, मम्मी की मदद करो ना जाकर।
3: जी अंकल।
2: अंकल आपका लेक्चर गर्म होते महासागरों पर है ना?
10: हाँ विवेक बेटा, असल में कॉन्फ्रेंस पूरी गर्माती धरती को ही लेकर है।
5: ओ जी, ये सब गर्म और ठंडा कैसे हो जाता है जी?
10: देखिए भाभी जी, इसमें कई सारे बल मिलकर काम करते हैं। महासागर, वायुमंडल, भूमि, इन सब में ऊष्मा का संचरण एक बहुत ही रोचक विषय है।
1: लीजिए भाई साहब, बातें तो चलती रहेंगी, चाय और बिस्किट।
10: अरे वाह,
1: नमकीन लाना तो मैं भूल ही गई। मानव
3: जी
1: जरा जाके अंदर से नमकीन लेकर आए फटाफट। जा
3: मैं लाती हूँ मम्मी।
10: भाई मानव जी, लोग आपको काम के लिए कहते हैं और उसे पूरा आपकी सृष्टि दीदी करती हैं, ऐसा क्यों है भाई, ये बताओ।
3: नहीं अंकल, वो ऐसा नहीं है।
10: देखो मानव, जैसा अभी मल्होत्रा भाभी पूछ रही थी कि ये धरती में अलग अलग मौसम, जलवायु, गर्मी सर्दी, ये सब कैसे होता है, तो ये तुम जानोगे?
3: हाँ हाँ अंकल जरूर। वैसे आपने कहा था कि कई सारे बल काम करते हैं।
10: हाँ बेटा, और ये बल लगातार काम करते हैं जिस कारण इस धरती पर जीवन बसता है।
3: लीजिए अंकल नमकीन।
10: शुक्रिया बेटा, अब मैं अकेला ही थोड़ी खाऊंगा। सूर्यप्रकाश
3: विवेक भैया मुझे भी दो ना थोड़ा सा। खाइए ना आंटी।
11: खाने के मामले में तो तुम लो।
10: सूर्यप्रकाश बच्चों को ऐसा नहीं कहा।
11: अरे नहीं, ये तो देख रहे हो कितना मोटा होगा।
10: अरे चाय पीजिए ना।
3: अरे बाबू जी आप भी लीजिए ना।
5: हाँ लेती हूँ।
10: हाँ तो मिसेस मल्होत्रा जी, देखिए सब जानते ही हैं कि सूरज से आने वाली ऊष्मा ही महासागरों, वायुमंडल, भूमि आदि में गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है।
3: हाँ अंकल, ये तो हमें भी लगता है क्या मानव, ऐसा ही है।
10: ठीक कहा सृष्टि। अच्छा पर क्या तुम बता सकती हो कि सूरज से आने वाली ऊष्मा किस किस प्रकार से महासागर और वायुमंडल में हस्तांतरित होती है?
3: अंकल मुझे थोड़ा बहुत पता है, पर आप बताइए ना, ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा।
2: वैसे अंकल मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से ऊर्जा हस्तांतरण के तीन तरीके हैं। पहला रेडिएशन यानी विकिरण, दूसरा कंडक्शन यानी चालन, और तीसरा कन्वेक्शन यानी संवाहन।
11: हाँ, इसी बात पे तो एक बिस्किट और ले लेना।
10: अच्छा सूर्य प्रकाश, अगर मैं अच्छी बात बताऊंगा तो मुझे चाय पीने के लिए कहोगे? वैसे एक बात कहूं कि विवेक ने बहुत सही बात कही है। तुमने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश शाबाश।
5: हो जी, हमारी कॉलोनी का सबसे होशियार लड़का है विवेक
3: गुप्ता। क्या बात है
10: जी। तो रेडिएशन यानी विकिरण के कारण ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा पहुंचती है।
2: मानव पता है माइक्रोवेव ओवन में जो खाना गर्म होता है वो इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी माइक्रोवेव द्वारा ही होता है, पता है तुझे?
3: अच्छा, तभी बड़ी जल्दी खाना गर्म हो जाता है।
11: और तुम जल्दी से खा भी सकते हो। और मानव ये जो तुम रिमोट से टीवी पर चैनल बदलते रहते हो वो सब भी इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण ही होता है।
3: और पापा ये रेडियो, बिना तार का फोन, ये सब भी तो इन्हीं तरंगों से चलते हैं ना। यानी ये धरती भी सूरज से आने वाली इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों से ही गर्म होती है ना अंकल?
10: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटा। असल में सूरज जैसे गर्म पिंड विकिरण अधिक तीव्रता से उत्सर्जित करते हैं और ज्यादातर ये छोटी तरंग दैर्ध्य वाली ही तरंगे होती हैं। और जब ये तरंगे ठंडी धरती से टकराती हैं तो धरती लंबी तरंग दैर्ध्य की तरंगे वापस भेजती है।
11: हाँ, यानी धरती तीव्र ऊर्जा वाली तरंगे सोखकर हल्की तरंगे वापस छोड़ती है। एग्जैक्टली विनोद ना?
10: कुछ कुछ ऐसा ही है सूर्य प्रकाश।
3: अंकल कंडक्शन की प्रक्रिया तो तब होती है ना जब कोई गर्म पेंट किसी ठंडे पेंट के संपर्क में आता है। जैसे मम्मी गर्म कुकर को स्टील के स्टैंड पर रखती है तो वो भी गर्म हो जाता है।
10: बहुत बढ़िया सृष्टि, तुम तो बहुत कुछ जानती हो बेटा। देखो तुम करते हो, पता है तुम्हारी बेटी है।
11: थैंक यू यार।
10: देखो बेटा, कंडक्शन में तापन की दर यानी गर्म करने की दर तापमान के अंतर के अनुसार बढ़ती जाती है। मतलब जितना तापमान में अंतर उतना ही ऊष्मा का हस्तांतरण।
2: अब अंकल ये तापन की दर पदार्थ के प्रकार से भी प्रभावित होती है ना?
10: हाँ बेटा, अब जैसे धातुओं में कंडक्शन अन्य पदार्थ जैसे लकड़ी, सख्त प्लास्टिक आदि की तुलना में तीव्र होता है। यानी कुछ पदार्थ बढ़िया कंडक्टर होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं।
3: हाँ, जैसे हवा ताप का एक बुरा कंडक्टर है।
10: बिल्कुल सही सृष्टि।
3: पर अंकल फिर हवा में ऊष्मा कैसे आती जाती है?
2: मानव इसमें काम आती है तीसरी प्रक्रिया यानी कन्वेक्शन, मतलब संवहन।
3: अरे मानव संवहन इस्लाम अंकल ने

0: बताया भी था तो भूल गया। नहीं नहीं दीदी, मुझे याद है।
1: ओए तो पुत्र, विनोद अंकल को भी तो बताओ ना।
2: जी अंकल, कन्वेक्शन यानी संवहन में पानी या हवा गर्म कर ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडा पानी या ठंडी हवा ले लेती है।
3: अच्छा, तो तुम्हें प्रोफेसर शम्सुल इस्लाम पढ़ा कर गए हैं।
0: जी।
3: वैसे शाबाश बेटा, सही कहा तुमने। संवहन प्रक्रिया द्रव्य और गैसों में देखी जाती है। इस प्रक्रिया में तरल पदार्थ और गैस जब गर्म होते हैं ना, तो वहां से उनकी सघनता कम हो जाती है।
0: हाँ, जैसे भूमध्य रेखा पर सूरज की गर्मी से होता है।
3: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिर ये गर्म तरल पदार्थ ऊपर उठता है और उसकी जगह ठंडा तरल ले लेता है। बस यही प्रक्रिया चलती रहती है और उसी से बनता है महासागरों और वायुमंडल का संचरण।
0: हाँ अंकल, ये तो हमें भी पता है कि भूमध्य रेखा से महासागरों का पानी और हवाएं गर्म होकर ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाती है।
3: वाह वाह बेटा मानव, बहुत बढ़िया। तुम्हें भी काफी कुछ पता है। वैसे मिसेस मल्होत्रा,
1: हाँ जी,
3: आप मानव के बारे में नहीं कहेंगी जो आप विवेक के बारे में कुछ कह रही थी।
1: ओ जी, ये भी हमारे कॉलोनी का सबसे होशियार पुत्र है।
3: वैसे मानव बेटा
0: जी,
3: तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हें पृथ्वी की प्रकृति के परिवार के इन छोटे बड़े बलों के बारे में पता है। ये रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन आदि सब इस प्रकृति के परिवार के सदस्य हैं, जो लगातार काम करते रहते हैं और कभी भी काम से जी नहीं चुराते। हाँ।
4: और अगर ये काम से जी चुरा लें तो हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। हाँ
5: बिल्कुल। हाय हाय हाय वसुधा, क्या बात कही है तुमने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
3: वैसे यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा, बच्चे तो बच्चे, मारे माँ।
1: ओ जी, मैं चलती हूँ। असल में मैं भी अपने परिवार की एक सदस्य हूँ।
5: अच्छा,
1: उसी परिवार का बल हूँ। मेरे बगैर वो हैप्पी के पापा है ना जी, चाय के लिए तरस रहे होंगे।
5: ओके, हाँ।
1: मैं भी जाके अपना काम करती हूँ जी। नमस्ते।
5: नमस्ते, नमस्ते।
3: ये अचानक,
5: कोई बात नहीं विनोद, तुम्हारे इस लेक्चर से किसी को अपना परिवार और अपनी जिम्मेदारी याद तो आई।
3: ये क्या तुम लोग
4: कुछ भी बोलते हैं।
3: अच्छा सूर्य प्रकाश, ये छोटे बड़े बल जो किसी ना किसी प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, जिससे जीवन चलता रहता है, ये एक परिवार की तरह ही तो कार्य करते हैं, जिससे इस नीले ग्रह पर जीवन चलता रहता है।
5: हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
0: पर अंकल, इससे जीवन कैसे चलता है?
6: अरे मानव, महासागरों का चक्र, हवाओं का चक्र, जो पोषक तत्व इधर से उधर पहुंचाते हैं, धरती पर वर्षा, हिमपात, जलवायु और मौसम बनाता है।
0: ओ।
6: वो इन बलों के कारण ही तो संभव है।
3: हाँ भाई, ये बल चाहे कन्वेक्शन हो, कंडक्शन हो या रेडिएशन हो, ये सब जो ऊर्जा यहाँ से वहां ले जाते हैं, इसी से तो धरती पर जीवन बना रहता है।
6: इन प्रक्रियाओं के कारण ही तो ये नीला ग्रह जीवन भरा ग्रह है। एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का स्थानांतरण, सभी मौसमी चक्रों, जलवायु चक्रों आदि को ताकत देने वाले इंजन, ये सभी प्रक्रियाएं ही तो हैं।
0: भैया, सभी प्रक्रियाएं हैं या बल? बल क्या है? ताकत, एक ऐसी ताकत जो इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती है।
3: शाबाश सृष्टि। हाँ, और इन सभी प्रक्रियाओं से दाब में फर्क आता है, सघनता में फर्क आता है, जिस कारण पूरा तंत्र गतिमान रहता है।
5: बिल्कुल,
4: सच में ये सारी बातें कमाल की
3: होते हैं।
0: अंकल, ये सूरज की किरणें जब धरती से टकराती हैं, तो रास्ते में भी तो कुछ ऊष्मा खोती है ना?
3: बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर वायुमंडल कुछ ऊष्मा ना सोखे या वापस ना भेजे, तो ये धरती तो तप कर भट्टी जैसी हो जाएगी।
6: और अंकल, सूरज की किरणों से वायुमंडल ज्यादा गर्म तो नहीं होता?
3: हाँ विवेक, पर ज्यादातर पराबैंगनी किरणें ऊपरी परतों द्वारा सोख ली जाती हैं और उन्हें ऊष्मा में बदल दिया जाता है।
0: ये ज्यादातर ओजोन की परत में होता है।
3: बिल्कुल ठीक। असल में वायुमंडल की अलग अलग परतें होती हैं, कुछ गर्म होती हैं तो कुछ नहीं। ज्यादातर ऊष्मा वायुमंडल की नीचे की परतों में बादलों और जल वाष्प द्वारा सोखी जाती है। इसके साथ साथ इन किरणों का अधिकतम बिखराव निचले और ज्यादा सघन वायुमंडल में होता है, जहाँ ज्यादा धूल और जलवाष्प होता है,
6: और इन्हीं में से कुछ बिखरी तरंगें धरती की ओर मुड़ जाती है ना अंकल?
3: हाँ विवेक, पर ज्यादातर अंतरिक्ष में ही खो जाती हैं।
6: अच्छा,
3: अंतरिक्ष से जो धरती की तस्वीरें ली गई हैं, उनसे पता चला है कि किसी भी पल धरती की आधी सतह बादलों से ढकी रहती है।
6: यानी कुछ मात्रा में आने वाली ऊर्जा को सोखने के साथ ये बादल काफी मात्रा में ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं।
3: हाँ बिल्कुल सही समझे तुम, और ये परावर्तित ऊर्जा जो थोड़ी बहुत धरती तक भी पहुंचती है उसे क्लाउड अल्बिडो भी कहते हैं।
6: अच्छा,
3: और जब धरती की सतह से ऊर्जा परावर्तित होकर इसमें जुड़ जाती है तो इसे टोटल प्लैनेटरी अल्बिडो कहा जाता है।
5: भाई विनोद, ये धरती से ऊर्जा का परावर्तन तो बर्फ हिम आदि से ज्यादा होता होगा।
3: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने सूर्य प्रकाश।
2: पर बर्फ या हिम से ऐसा क्यों ज्यादा होता है? अरे मानव, सफेद चीज किरणों को अधिक परावर्तित करती है इसलिए। अच्छा
3: हाँ, परंतु जब सूरज सीधा महासागरों के ऊपर होता है तो ये ऊर्जा का परावर्तन कम होता है।
6: तो अंकल, जैसा आपने कहा था कि धरती लंबी तरंग दैर्ध्य किरणों को पुनः परावर्तित करती है, तो पानी और वायुमंडल ज्यादातर विकिरण से ही गर्म होता है?
3: हाँ बेटा विवेक, थोड़ा बहुत कंडक्शन होता है और सतह की कुछ हवाएं कन्वेक्शन से भी ऊपर उठती हैं।
6: अच्छा,
3: परंतु मुख्य प्रक्रिया रेडिएशन यानी विकिरण ही है।
5: हाँ, और भाई ये जो लंबी वेवलेंथ यानी लंबी तरंग दैर्ध्य वाली ताप ऊर्जा होती है, इसे वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प ग्रहण कर लेती है, इसीलिए तो धरती का तापमान गर्म हो पाता है।
3: बिल्कुल सही कहा सूर्य प्रकाश, संगत का असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है। तो जैसा कि सूर्य प्रकाश ने कहा कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊष्मा को नीचे का घना कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का वायुमंडल ही सोख लेता है।
6: तो अंकल, ऊष्मा ना सिर्फ धरती से वापस जाती है बल्कि दोबारा पलटकर धरती पर ही आती है।
3: हाँ विवेक, और संवहन द्वारा जो सतह से जल के वाष्पन द्वारा ऊर्जा सोखी जाती है, वही ऊर्जा ऊंचे स्तर पर जाकर संघनन के रूप में वापस छोड़ दी जाती है।
6: अच्छा,
2: यानी अंकल एक संतुलन बना रहता है।
3: हाँ बेटे, टोटल प्लैनेटरी अल्बिडो और धरती से परावर्तित विकिरण की अंतरिक्ष में हानि सूरज की निरंतर आती किरणों से संतुलित हो जाती है।
6: यानी एक ऐसा संतुलन जिसमें निरंतर अंतरिक्ष में होती ऊर्जा की हानि लगातार सूरज की ऊर्जा आपूर्ति से पूरी होती है।
3: हाँ विवेक, और इस संतुलन में महासागर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: हाँ, ये महासागर ऊष्मा का भंडारण करते हैं और उसे ठंडे इलाकों तक पहुँचाते हैं, है ना अंकल?
3: अरे वाह मानव, तुम्हें तो काफी जटिल बातें मालूम है। सूर्य प्रकाश, अब तुम वो नहीं करोगे जब भी तारीफ करता हूँ तो कुछ ऐसा ही करते हो।
5: नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं वसुधा को आते हुए देख रहा हूँ।
3: क्या बात है।
4: चलिए भाई साहब, खाना तैयार हो गया है। सृष्टि आओ बेटे मेरे साथ आके।
2: हाँ जी मम्मी। मम्मी मैं भी आपके साथ आता हूँ।
0: है मानव, कहाँ आता हूँ, बर्तन लगाने या खाना खाने?
2: क्या दीदी, जब सभी बल एक परिवार की तरह कार्य कर रहे हैं तो मैं भी तो अपना बल प्रयोग करूँ ना।
4: तो बेटे वही तो पूछा जा रहा है, खाने में या बर्तन लगाने में?
2: अरे मम्मी, पहले बर्तन लगाने में और फिर खाने में।
3: वाह मानव बेटे वाह। अरे भाई, सबके थोड़े बहुत योगदान से ही तो जीवन का पहिया आगे बढ़ता है।
5: चलो भाई, चलो विनोद खाना खा लो। आओ विवेक, चलो
3: चलो बढ़े खाने की ओर। भाई हाँ वसुधा भाभी, खाना बहुत ही लाजवाब था। खाना वसुधा ने बनाया था, तुमने नहीं?
5: क्या बीवी तो मेरी है ना।
4: आप भी ना, कुछ भी।
2: लीजिए अंकल, सौंप लीजिए। अंकल आपकी बातों का मानव पर कुछ असर तो हुआ है, वरना आज तक इसने सिर्फ सौंफ मांगी है, दी नहीं है।
5: विनोद, कितनी सारी प्रक्रियाएं इस धरती पर चलती रहती हैं, कितने बल काम करते हैं, सच में यार कमाल है।
3: हाँ सूर्य प्रकाश, ये सब अद्भुत है यार।
2: अंकल, धरती का एक महत्वपूर्ण बल भी है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
0: कौन सा बल दीदी?
2: अरे गुरुत्वाकर्षण बल, है ना अंकल? इसी के कारण तो पृथ्वी पर वायुमंडल थमा हुआ है।
3: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि, ये धरती इस गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ एक चुंबक की तरह भी काम करती है।
2: हाँ, धरती के भी चुंबक की तरह दो ध्रुव हैं। पर अंकल, ये धरती एक बड़ी चुंबक कैसे बनी?
3: मानव, वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के चुंबकीय क्षेत्र बनने की शुरुआत शायद सूरज के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरंभ हुई होगी, उस समय जब करोड़ों वर्षों पहले ये धरती एक आग का गोला थी।
2: पर करोड़ों वर्षों बाद भी धरती एक विशाल चुंबक की तरह ही तो बर्ताव करती है।
3: मानव, तुम्हें धरती की संरचना पता है ना?
2: हाँ अंकल, बिल्कुल पता है।
3: तो मानव, धरती के केंद्र में जो कोर है वो अत्यधिक तापमान के होते हुए भीषण दाब के कारण ठोस है। अब अगली परत है तरल बाहरी कोर की, जो करीब 2200 किलोमीटर चौड़ी है। अब इसके ऊपर कौन सी परत है?
2: मेंटल।
3: शाबाश। तो ये बाहरी कोर ठोस अंदरूनी कोर और मेंटल के बीच में परिसंचरित होता रहता है, यानी घूमता रहता है।
2: अंकल, ये परिसंचरित होने वाला तरल बाहरी कोर निकल और लौह का बना होता है ना?
3: हाँ सृष्टि बेटे।
6: अंकल, ये निकल लौह का मिश्रण तात्विक रूप से तो चुंबक नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के कोर का तापमान इतना ज्यादा है कि कोई पदार्थ अपना चुंबकत्व नहीं बनाए रख सकता।
3: बिल्कुल ठीक विवेक। असल में धरती का चुंबकीय क्षेत्र इस पिघले मिश्रण में विद्युतीय प्रवाह के उत्पन्न होने से होता है।
4: वो कैसे भाई साहब?
7: अरे वाह, आज तो वसुधा को भी बहुत रोचक लग रहा है विषय।
4: आप ना अपनी बातें तो रहने ही दो। किसी विषय में रोचकता बात को समझाने वाले से आती है। हाँ।
3: ये मेरी तारीफ में था कुछ।
2: वाह मम्मी, क्या बात बोली है। पापा, आपकी बात पर मम्मी का गर्म होना कंडक्शन का उदाहरण है।
3: क्या बात है बेटे। हो सकता है बेटे, पर धरती के अंदर ये पदार्थ कन्वेक्शन प्रवाह के कारण ही परिसंचरण करते हैं, और ये कन्वेक्शन अंदरूनी और बाहरी कोर के तापमान में भिन्नता के कारण होता है।
2: यहाँ अंदर भी कन्वेक्शन प्रक्रिया।
3: अच्छा, तुम्हें कोरियोलिस बल पता है?
2: हाँ अंकल, ये बल धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण हवाओं, महासागरों के जल आदि पर प्रभाव डालता है।
3: शाबाश बेटा। तो एक विचार के अनुसार जो कोरियोलिस बल धरती पर भयानक चक्रवात लाता है, वो पिघले भारी कोर को रोलर की तरह घुमा देता है।
6: ओहो, तो ये घूमता द्रव डायनमो में तार के कॉइल की तरह काम करता है, अब समझा। फिर परिसंचरण के कारण द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र बनता है।
3: बिल्कुल ठीक समझे विवेक, ये बिल्कुल एक डायनामो की तरह काम करता है।
2: डायनामो जिससे बिजली बनती है, वही ना?
6: हाँ सृष्टि, बिल्कुल वही। इस धरती की प्रक्रियाएं जितनी बाहर कमाल की हैं, उतनी ही अंदर।
7: विनोद, चलो भाई तुम आराम कर लो, फिर तुम्हें जाना भी तो है ना।
3: हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, हालांकि बात करने का मन कर रहा है।
7: हाँ, ये सच बात है।
3: चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। अच्छा बच्चों,
2: अच्छा,
3: थोड़ी देर में मिलते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, सच कह रहा हूँ मैं। और इतनी सारी बातें पता हैं इसे मानव को, वाकई बहुत अच्छा,
2: बहुत मजा
7: आया। चलो चलो चलो विनोद, अब तुम्हारी फ्लाइट का टाइम होने वाला है।
3: अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर लौट कर मिलते हैं। हाँ
2: जी। अच्छा अंकल, नमस्ते, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: थैंक यू सृष्टि बेटा, थैंक यू।
7: विवेक बेटा, सामान टैक्सी में रखवा
2: जी। लाइए अंकल, आपका ये बैग मैं उठा लेता हूँ।
3: अरे मानव। चलो ठीक है, ये हल्का है, इसे तुम उठा सकते हो।
2: ठीक है।
3: अच्छा वसुधा भाभी, नमस्ते।
4: नमस्ते भाई साहब, नमस्ते।
2: मम्मी, मानव देखो कैसे सामान रख रहा है।
4: बहुत ही अच्छा है सृष्टि। धरती के इन बलों की जानकारी से हमारे मानव का बुद्धि बल तो बढ़ा कम से कम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो

0: कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख कर चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबल की हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम ख़राब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
1: काम बहुत ज़रूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम होता है, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट करें।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैर में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: वहाँ भी जगह मिल जाए, अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक हो जाता है, बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है लूज मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड नहीं दे सकते।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ये ORS?
1: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है ये, किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आपको देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही कि सुबह जल्दी उठे
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है कि जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पर इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें थोड़ा सा, जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें उसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सर पर भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
1: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
0: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
2: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेंगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: करवे।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
0: एक कमबख्त दिल की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
1: तो भुगतो।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको

कारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: जब टीचर हमारी क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो जब हम उसके बारे में पता करते हैं और अगर हमें पता चलता है कि उस बच्चे को बुखार है तो फिर हम तुरंत आशा से संपर्क करते हैं जो उसी गांव की होती हैं। वो आती हैं और हम उन्हें उन बच्चों के बारे में बताते हैं कि आप जाकर देखिए। फिर वो उनके घर जाती हैं, उनकी कंडीशन देखती हैं और फिर जैसा होता है वैसा वो उनको रेफर करती हैं। बच्चों को निबंध के माध्यम से, भाषण शैली के माध्यम से जागरूक करते हैं और बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से भी जागरूक करते हैं और बच्चे उसे अपने घर जाकर के अपने अभिभावकों को बताते हैं।
1: मेरी बेटी स्कूल से जो सब सीख के आती है वो सब हम घर पे पालन करते हैं, जैसे कि हाथ धोना, गड्ढे में पानी इकट्ठा न रहने देना, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं क्योंकि हमें मच्छर काट लेगा तो बुखार हो जाएगा। और बच्चे जो स्कूल से सीख के आते हैं वो इसे सब बच्चे अपने घर पे अच्छे से पालन करें।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: तुमने शादी के बाद भी ऐसे ही रहा, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
3: अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है।
2: सच्ची?

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को

0: ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है,
2: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ओले ओले ओले, ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

में फल और सब्जी घर पर ही उगावे हम, कीटनाशकों से रहित उगाकर शुद्ध और ताजा खावे हम, कीटनाशकों से रहित उगाकर शुद्ध और ताजा खावे हम, ये अभियान।

संयम से जीवन सफल हमारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सारे शहर में नाम तुम्हारा दीवारों पे लिखता है।
2: इतनी टाइम नहीं है सबके लिए, सबके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। एक अच्छा सोल्जर बनना चाहता हूँ।
3: किसने रोका है?
1: सारे

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: She likes to drop it low, man.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जान ले लूंगा।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University. Music, Desi Trap, Singer, Lyricist, Composer, Simran Kaur Dudley, Title, Dilbar Jani. Let's listen to it only on Suno Sharda 90.8 FM.
6: Hadde

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है?
1: राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जाँच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
6: काकी आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
5: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
6: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
5: दुल्हन सुंदर ही नहीं समझदार भी है।
7: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
10: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: Vasudhaiv

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है, जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं, या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें, जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda's